श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए नंदनी शरण की आवाज में राजेश जौहरी की रचना।

श्रोताओं, उषा सेठ व साथियों की गाए इस भजन के साथ ही भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स। आज की जानकारी का विषय है धान की प्रमुख बीमारियां।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है धान में लगने वाले प्रमुख रोग व उनका नियंत्रण। सबसे पहले बात करते हैं ब्लास्ट रोग की। ये एक फफूंद जनित तथा भयंकर रोग है। रोगग्रसित पत्तियों पर छोटा नीला

0: जलसिक्त धब्बा बनता है, जो कि आकार में बढ़कर कई सेंटीमीटर लंबा व लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ा व नाव की आकार का हो जाता है। इसके बीच का भाग मटमैले रंग का व किनारों पर गहरे भूरे रंग की पतली पट्टी बनी होती है। कल्ले की गांठों पर भूरे धब्बे बनते हैं, जो कि गांठ को चारों ओर से घेर लेते हैं। बालियों के निचले डंठल पर मटमैले बादामी रंग के धब्बे बनते हैं तथा डंठल बालियों के भार से टूट जाते हैं। जहाँ तक इस रोग के प्रबंधन का सवाल है, तो सबसे पहली बात आती है रोग प्रतिरोधी किस्मों की। ब्लास्ट रोग के लिए प्रतिरोधी किस्में हैं रासी, विकास, कृष्णहंसा, तुलसी, IR64, आदित्य आदि। यदि आप इनके बीजों का प्रयोग करें तो इस रोग से आप बच सकते हैं। बीजोपचार भी इसके लिए किया जा सकता है। बीजों का उपचार ट्राइसाइक्लोजॉल 1 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से करना चाहिए। फसल में कार्बेंडाजिम अथवा एडिफेनफस अथवा ट्राइसाइक्लोजॉल दवा को 600 मिलीग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों को आपको खेत से बाहर कर देना चाहिए। इसे खेत में ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। किसान भाइयों, जहाँ तक इस रोग के आर्थिक हानि स्तर का सवाल है, तो फूटान अवस्था में अगर 5 से 10% संक्रमण आपको दिखाई दे, बूटिंग अवस्था में पत्तियों का अगर 5 से 10% क्षेत्र संक्रमित हो जाए, अथवा फूल आने की अवस्था में पत्ती का 5% क्षेत्र संक्रमित हो, तो ऐसी स्थिति में आपको कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना होगा। अब बारी आती है तना विगलन रोग की। इस रोग के लक्षण रोपाई के 2 से 3 सप्ताह बाद तना तथा पर्णछत पर पानी की सतह के पास भूरे काले धब्बे के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो कि फैलकर पूरे तने को घेर लेते हैं। रोगग्रस्त जो तना होता है वो गलकर गिर जाता है। इसके प्रबंधन के लिए खेत से पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था आपको करनी होगी तथा अधिक प्रकोप होने पर फसल पर 0.25% मैंकोजब दवा का छिड़काव करें। जैविक खाद के प्रयोग से भी रोग के प्रकोप में कमी लाई जा सकती है। जहाँ तक इस बीमारी के आर्थिक हानि स्तर का सवाल है, तो फूटान अवस्था में 10% से अधिक प्रभावित पौधे, बूटिंग अवस्था में भी 10% से अधिक प्रभावित पौधे और फूल आने की अवस्था में अल्प से मध्यम यानी 10 से अधिक% जो पौधे हैं वो प्रभावित हैं, तब आपको कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं शीत ब्लाइट यानी पर्णछद अंगमारी की। इस रोग के प्रमुख लक्षण मुख्यतः पर्णछद पर पत्तियों पर उभरते हैं। पर्णछद पर पानी की सतह से ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे हरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जो कि भूरी या बैगनी किनारों से घिरे रहते हैं। बाद में ये धब्बे तने को चारों ओर से घेर लेते हैं। भयंकर प्रकोप के कारण दाना अच्छी तरह से नहीं बन पाता है। यदि रोग का प्रकोप पौधों की प्रारंभिक अवस्था में हो जाए, तो पौधे गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अधिक नम वातावरण में पौधों के प्रभावित भागों पर मटमैले सफ़ेद रंग के कवक जाल की परत देखी जा सकती है। इसके प्रबंधन के लिए फसल में नाइट्रोजन खादों की या तो कम मात्रा में प्रयोग करें या फिर देर से या 2 से 3 भागों में बांटकर प्रयोग करें। अगर फसल में जो बीमारी है वो 10% से अधिक लगती है, यानी 10% से अधिक प्रभावित पौधे आपको दिखाई देते हैं विभिन्न अवस्थाओं में, तब आप कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशक दवाओं में कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप पौधों पर छिड़क सकते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या झुलसा रोग की। ये एक जीवाणु जनित रोग है। प्रभावित पत्तियों पर पीले या हल्के हरे रंग की लहरदार धारियां पत्ती के एक या दोनों किनारों के सिरों से प्रारंभ होकर नीचे की ओर नसों के समानांतर बढ़ती हैं तथा पत्तियां सूख जाती हैं। ये रोग पूरे पौधे पर फैलकर इसे सुखा सकता है। रोग का प्रकोप होने पर पौधे झुलसे हुए से प्रतीत होते हैं। अधिक नम स्थिति में रोग प्रभावित अंगों पर जीवाणु जल की बूंदें भी देखने को मिलती हैं। इस रोग के प्रबंधन के लिए फसल में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा में कमी करें अथवा इन उर्वरकों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बांटकर प्रयोग में लाएं। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों को उगाएं तथा बीजों को एग्रोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 3 ग्राम तथा सेरोसॉन 1% के घोल में 8 घंटे तक भिगोकर सुखा लें और फिर बुआई करें। अगर आपको पौधों की विभिन्न अवस्था में 2 से 5% संक्रमण दिखाई देता है, तब आप समझ सकते हैं कि आपको नियंत्रण उपाय करने हैं। हालांकि इसका नियंत्रण मुश्किल है, फिर भी इसमें आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स और विषय था धान की प्रमुख बीमारी।

या आपको जानकारी दे रहे थे शिबू जॉर्ज। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17

0: जत और नौ कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations, and more than 125 partner spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasised that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
2: Swami Vivekanand ji, युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: The Union Government has released 1,09,019 crore rupees to state governments as an additional installment of tax devolution over and above the regular monthly transfer schedule for August 10. In a statement, the Finance Ministry said, the additional installment is intended to give states more room to speed up capital and development spending. The states include Uttar Pradesh, which received the largest share at 19,208 crore rupees, followed by Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Sikkim, Goa and Nagaland. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has reviewed the preparedness for the National Eligibility Cum Entrance Test for Postgraduate NEET PG 2026 to ensure the smooth, secure, transparent and technology-enabled conduct of the examination. The exam is scheduled to be held on the 30th of this month. During the meeting, the minister assessed the preparedness of the National Board of Examinations in Medical Sciences, NBEMS, technology partners and other stakeholders involved in conducting the exam. The minister stressed that every effort must be made to ensure a fair, transparent and candidate-friendly exam.

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रंगत मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सोमवार 3 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और परसों मंगलवार 4 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कैंबल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर 4 अगस्त को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और उसी दिन रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कानिकुबार के लिए 7 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और 8 तारीख को शाम 4 बजे कानिकुबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। नालंदा जहाज नानकौरी होते हुए कैंबल बे जाने के लिए 4 अगस्त को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और 6 अगस्त को सुबह 8 बजे कैंबल बे से चलकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप जाने के लिए आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और अगले दिन प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए कल 3 अगस्त को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा व कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी हडबे स्वराज द्वीप जाने के लिए कल 3 तारीख को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा व कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सोमवार 3 अगस्त को दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में श्रोताओं स्वीकार करें हेमलता का नमस्कार। श्रोताओं चलिए आज के कार्यक्रम में याद करें अपने दोस्तों को और दोस्ती में बिताए उन सुनहरे पलों को। सच्ची दोस्ती एक दिन में बयां करने का किस्सा नहीं, ये पूरी जिंदगी निभाए जाने वाली जिम्मेदारी है। दोस्ती एक ऐसा त्योहार है जिसका जश्न हम जिंदगी भर मनाते हैं। मुलाकातें रोज हो या सालों में एक बार, पक्की दोस्ती दूरियों का एहसास नहीं होने देती। दोस्त साथ हो तो हर दिन दिवाली, और दूर हो तो दोस्ती में बिताए वो खट्टे मीठे पल हमें गुदगुदाते रहते हैं।

दोस्ती कई तरह के लोगों के बीच होती है। कुछ दोस्त बचपन के होते हैं, कुछ यारी स्कूल और कॉलेजों के दिनों में बन जाती है और कुछ दोस्ती उम्र के उस पड़ाव में होती है जहां हम खुद से प्यार करना चाहते हैं, खुद के लिए जीना चाहते हैं। तब एक सच्चा दोस्त

श्रोताओ, कहते हैं दोस्ती कभी खास लोगों से नहीं होती, जिनसे होती है वो ही खास बन जाते हैं। दिन महीने साल बीत जाए, दोस्ती में बिताए पल और उन पलों की यादें हमें उम्र के किसी भी पड़ाव में तरोताजा कर देती है।

0: श्रोताओं, आप भी जिंदगी में अच्छे दोस्त बनाइए और उस दोस्ती में जिंदगी बिताइए, और इस कार्यक्रम से दीजिए हेमलता को इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी हेमलता। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 318वीं कड़ी। गायक कलाकार हैं रविंद्र साठे।

लंका में घमासान युद्ध हो रहा है। एक ओर श्रीराम तो दूसरी ओर रावण के जयघोष के साथ दोनों ओर के वीर सेनानी एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं। वानर और भालू भीमकाय शिलाखंड किले पर फेंकते हैं। राक्षसों के पैर पकड़ उन्हें धरती पर पटक देते हैं। श्री राम के प्रताप से वानर सेना राक्षसों के झुंड के झुंडों को मसल कुचल डालती है और चारों ओर राम का जयघोष गूंज उठता है। राक्षसों के समूह युद्धस्थल से भाग खड़े हुए। नगर में स्त्रियों, बच्चों और विकलांगों का क्रंदन सुनाई देने लगा। नगर निवासी इस विपत्ति के लिए रावण को कोस रहे हैं। रावण ने जब अपनी सेना के पस्त होकर युद्धभूमि से भागने का समाचार सुना तो भागते सैनिकों को रोक चेतावनी दी, जो भी युद्ध में अपनी पीठ दिखाकर भागेगा मैं अपनी तलवार से उसे मार डालूंगा। मेरे दिए हुए भोजन पर पलने और भोग विलास करने के बाद अब तुम लोगों को प्राणों का मोह हो गया है। रावण से अपनी भर्त्सना सुनकर राक्षस योद्धा एक बार फिर युद्ध में आ डटे। सोचा, रावण के हाथों मरने की अपेक्षा लड़ते हुए शत्रु के हाथों मरना ही श्रेयस्कर है। नए उत्साह के साथ राक्षसों ने वानर सेना को त्रस्त कर दिया। अब भयभीत वानर भागने लगे। जिस समय हनुमान ने अपनी सेना में भगदड़ का समाचार सुना उस समय पश्चिमी द्वार पर मेघनाथ से उनका युद्ध हो रहा था। द्वार तोड़ना कठिन लग रहा था। हनुमान को अतिशय क्रोध हो आया। काल की भांति गर्जन करते हुए एक भीमकाय शिलाखंड लेकर वे लंका के किले पर जा चढ़े। फिर मेघनाथ के रथ को सारथी समेत छिन्न भिन्न कर दिया और लात से मेघनाथ की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि वो धराशायी हो गया।

स्वच्छ करी गायक कलाकार थे रविंद्र साठे तथा संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देशगान।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मौसम विभाग

से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि तेज हवा के चलते वायु की गति लगभग 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 4 अगस्त तक समुद्र में न जाएं। आज दोपहर तक के मौसम संबंध आज दोपहर तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा होगी। तो ये थी मौसम की जानकारी। और अब एक नजर आज के कार्यक्रमों पर। आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देशरागनी कार्यक्रम। ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे निशिकांत बाली। सुबह 9:00 बाल जगत कार्यक्रम में मित्रता दिवस पर चर्चा होगी व हिरोशिमा दिवस पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर पंडित भजन सुपुरी का संतूर वादन होगा। सुबह 10:00 सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दिन के 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी पसंद। दिन के 11:30 पर आप सुनेंगे चंद गजलें। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे व विश्व स्तनपान सप्ताह और मित्रता दिवस पर चर्चाएं होंगी। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर विश्व स्तनपान सप्ताह और कुछ फिल्मी गाने आप सुन पाएंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायिका होंगी तायरा सईद। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर विश्व स्तनपान दिवस पर डॉक्टर विनीता शाजू के साथ ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर सभा का समापन होगा, जबकि एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगी गीत लहरी कार्यक्रम के साथ। दोपहर बाद 3:00 सुनिए एल्बम टाइम कार्यक्रम। 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें मित्रता दिवस पर चर्चा होगी तथा सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च मूस के सदस्य द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत होगा। शाम 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे। 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण। शाम 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5:00 निंजा मरुपदले के तहत पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे व विश्व स्तनपान सप्ताह और मित्रता दिवस पर चर्चाएं की जाएगी। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुविचार के साथ विश्व स्तनपान सप्ताह और मित्रता दिवस पर चर्चाएं होंगी। संध्या 6:00 संगीत संगनी कार्यक्रम। धरती के गीत कार्यक्रम में 6:30 पर आप भजन भोजपुरी लोकगीत सुनेंगे। 6:45 पर देशगान कार्यक्रम। संध्या 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। संध्या 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवानी के तहत आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स व मित्रता दिवस पर चर्चा होगी। रात्रि 8:00 चित्रपट संगीत कार्यक्रम। 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरवगान कार्यक्रम। रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में सुधाकर देवले का गायन होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारतर तु विज्ञान विभागेन अद्य कर्नाटक केरल माहे नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा राजस्थान उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता तथैव दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख अरुणाचल प्रदेश गुजरात कोंकण गोवा मध्य प्रदेश ओडिशा अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अपि अतिवृष्टिः व्यक्तीकृता इति वार्ताः।
1: नमस्कार। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए जन सूचना।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 6.0 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% तथा न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.4 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय आज 5:07 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:44।

और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा व उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। तो ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देशरागनी कार्यक्रम और ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे निशिकांत बाली। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे पंडित भजन सुपुरी का संतूर वादन। सुबह 10 बजे सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आज दिन के 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी पसंद। 11:30 पर आप चंद गजलें सुनेंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायिका होंगी तायरा सईद। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर विश्व स्तनपान दिवस पर डॉक्टर विनीता शाजू के साथ ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे।

0: जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस ब्रेक के बाद।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुर।

से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नशे के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का होगा शुभारंभ। आज युवा नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प लेंगे। सारथी परियोजना से मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। केंद्र मंत्रियों ने अस्पतालों में युवाओं की भागीदारी वाली परियोजना को व्यापक बनाने पर किया मंथन। चिड़िया टापू जैविक उद्यान में प्रकृति और पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रेन फॉरेस्ट बर्डिंग ट्रेल का आयोजन किया गया। और MV स्वराजदीप कल श्री विजयपुरम से कोलकाता के लिए रवाना होगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों के जुड़ने और 1 करोड़ से अधिक युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। अंडमान निकोबार प्रशासन, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत माई भारत के सहयोग से आज सुबह 10 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम देशव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और विकसित भारत 2047 के संकल्प में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। दक्षिण अंडमान जिले से भी लगभग 1,000 माई भारत स्वयंसेवकों और युवाओं के इसमें भाग लेने की संभावना है। इस अभियान के तहत खेल, फिटनेस, योग, ध्यान, सांस्कृतिक गतिविधियों, जन जागरूकता कार्यक्रमों और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी रविवार अभियान भी शुरू किया जाएगा। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन और माई भारत श्री विजयपुरम ने सभी शिक्षण संस्थानों, युवा संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, अभिभावकों और नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने तथा माई भारत पोर्टल पर ई प्लेस लेने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश भर के अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में सारथी परियोजना के विस्तार की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया भी बैठक में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने युवाओं की भागीदारी वाली मरीज सहायता पहल को और व्यापक बनाने पर चर्चा की। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि सारथी परियोजना ने दिखाया है कि व्यवस्थित स्वयंसेवी भागीदारी से मरीजों की सुविधा बढ़ाई जा सकती है और स्वास्थ्यकर्मी अपनी जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के तहत प्रातरापुर विकास खंड द्वारा बिडनाबाद ग्राम पंचायत में आजीविका संवर्धन से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशक डॉ. अपूर्व शर्मा ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्थापित एक पशुधन सेवा केंद्र तथा विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत निर्मित 2 पोल्ट्री शेल्टर का उद्घाटन किया। रंगाचांग वार्ड नंबर 4 में स्थापित पशुधन सेवा केंद्र में हैचरी यूनिट लगाया गया है। नए पोल्ट्री शेल्टर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन कर नियमित आय अर्जित करने में मदद करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, रेन फॉरेस्ट बर्डिंग ट्रेल का आयोजन और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मेले, उत्सव और कार्यक्रम 2026-27

के तहत सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने कल पर्यावरण एवं वन विभाग के सहयोग से चिड़िया टापू के जैविक उद्यान में रेन फॉरेस्ट बर्डिंग ट्रेल का आयोजन किया। जैविक उद्यान की उपनिदेशक मीरा नाम्बियार ने उद्यान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद प्रतिभागियों को दो समूहों में बांटकर वन रक्षक राम विकास, वन क्षेत्र अधिकारी प्रमोद सिंह और एवियंस क्लब के सदस्य रूबेन पॉल के मार्गदर्शन में प्रकृति भ्रमण कराया गया। कार्यक्रम में पक्षी प्रेमियों, विद्यार्थियों, फोटोग्राफरों, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों और आम नागरिकों सहित 54 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने प्रकृति भ्रमण किया और लगभग 20 प्रजातियों के पक्षियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्हें स्थानीय और प्रवासी पक्षियों, उनकी जैव विविधता तथा वर्षा वनों के संरक्षण के महत्व की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर पक्षी अवलोकन को पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मत्स्य विभाग ने द्वीप समूह के पात्र स्वयं सहायता समूहों से विभाग के मत्स्य संग्रहालय सह जल जीव गृह परिसर में बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस बिक्री केंद्र के माध्यम से मत्स्य उत्पादों तथा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य वस्तुओं की बिक्री की जाएगी। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना और संग्रहालय आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इच्छुक एवं पात्र स्वयं सहायता समूह निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित खंड विकास अधिकारी की अनुशंसा सहित आवेदन 16 अगस्त तक सहायक निदेशक मत्स्य संग्रहालय सह एक्वेरियम मत्स्य निदेशालय श्री विजयपुरम के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। एमवी सुराजदीप कल सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से कोलकाता के लिए रवाना होगा। अतिरिक्त सामानों को चढ़ाने का कार्य आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य कल सुबह 5 बजे से 7 बजे तक चलेगा। जहाज हेड जेटी से छूटेगा। राजकीय पॉलिटेक्निक डिकलीपुर में विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए अस्थायी रूप से पात्र अभ्यर्थियों की पूर्व घोषित परीक्षा कार्यक्रम में प्रशासनिक कारणों से संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 18 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिविल, कंप्यूटर साइंस एवं गणित विषय के व्याख्याता पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। 19 अगस्त को इसी समय सिविल और कंप्यूटर साइंस के लैब तकनीशियन पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 20 अगस्त से संबंधित पदों के लिए कौशल परीक्षा आयोजित होगी। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे पहले जारी किया गया प्रवेश पत्र ही साथ लेकर परीक्षा में शामिल हो। मौसम विभाग ने निकोबार द्वीप समूह के 1-2 स्थानों पर आज भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसके साथ ही आज से 7 अगस्त तक द्वीप समूह के अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल से 5 अगस्त तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तटीय क्षेत्रों में ऊंची लहरें उठने की भी आशंका है। ऐसे में नौकाओं के संचालन और समुद्र तटों पर जाने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। अंडमान कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश हेतु परामर्श सह प्रवेश प्रक्रिया 5 और 6 अगस्त को आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग के दिन बीएससी मनोविज्ञान और बीए अंग्रेजी को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों के लिए ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। अंडमान निकोबार होमगार्ड संगठन की ओर से चयनित होमगार्ड स्वयंसेवकों की सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों को सरकारी अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद 10 अगस्त को सुबह 10 बजे पहाड़गांव थाना के होमगार्ड कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नशे के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का होगा शुभारंभ। आज युवा नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प लेंगे। सारथी परियोजना से मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। केंद्रीय मंत्रियों ने अस्पतालों में युवाओं की भागीदारी वाली परियोजना को व्यापक बनाने पर किया मंथन। चिड़िया टापू जैविक उद्यान में प्रकृति और पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रेन फॉरेस्ट बर्डिंग ट्रेल का आयोजन किया गया। और एमवी सुराजदीप कल श्री विजयपुरम से कोलकाता के लिए रवाना होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, सुप्रभात श्रोताओं। देशवाग्नि कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, अपने देश पर गर्व करना एक भारतीय की पहचान है। भारत की संस्कृति, सभ्यता, विविधता और प्रेम की परंपरा ने पूरे विश्व को सदैव प्रेरित किया है। हर भारतीय के दिल में जोश और गर्व की भावना होती है।

श्रोताओं, जन्मभूमि केवल एक स्थान नहीं, वह हमारी पहचान, हमारी यादों, हमारे संस्कारों और हमारी आत्मा से जुड़ा एक अटूट रिश्ता होती है। चाहे इंसान दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अपने देश की मिट्टी की खुशबू और अपनों का स्नेह उसे हमेशा अपनी ओर बुलाता रहता है।

कोने में चला जाए, लेकिन उसका दिल हमेशा अपनी जन्मभूमि की ओर खींचता है। यही एहसास, यही अपनापन और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम बड़े ही संपूर्ण अंदाज में व्यक्त होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजय

0: केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं और अब सुनिए गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

नमस्कार श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और सुप्रभात। श्रोताओं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कुछ फिल्मी गीतों के साथ और सुनाते हैं आपको अरिजीत सिंह के स्वर में सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का गीत, जिसे लिखा है कुमार ने।

श्रोताओं, और अब एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर लौटेंगे कुछ और गीतों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम के कार्यक्रमों के।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं,

0: पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई।
1: RBI कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सवेरे के 7:47 और ये हो रहे हैं 5 सेकेंड। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन शान और के स्वरों में दिल चाहता है फिल्म का गाना, बोल जावेद अख्तर के संगीत, शंकर एहसान लॉय का।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गाना। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार है शंकर एहसान लॉय, वो आवाज़ें हैं सूरज जगन और जॉय बरुआ की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी

0: 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और NEET PG 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर

0: में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरो जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी AI की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई AI से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट PG 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7

0: Commonwealth Games in Glasgow, boxers shined with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं निशिकांत बाली की आवाज़ में चंद खूबसूरत गज़लें। तो आइए पहले सुनते हैं कैसरुल जाफरी का कलाम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दालिब ताहिर की लिखी गज़ल निशिकांत बाली की आवाज़ में। अब लीजिए सुनिए निदा फाजली का कलाम, आवाज़ निशिकांत बाली की ही है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।
1: सीमा, सीमा, उठो।
2: क्या हुआ?
1: चेकअप के लिए जाना है ना।
2: सोने दो ना।
1: उठो।
2: अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा?
3: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।
4: समय का मोल
1: HIV पे कंट्रोल।
3: गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।
0: श्रोताओं, और अब बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल जगत।

आइए दोस्तों, कान लगाकर सुनिए आज की आवाज, क्योंकि आज का दिन है बेहद खास। जी हाँ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सभी मेरे दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है हमारे बाल जगत कार्यक्रम में। आज के स्पेशल विषय पक्के यार सच्ची यारी में हम बात करेंगे दोस्तों के इतिहास, मजेदार किस्सों और जानेंगे कि एक अच्छा दोस्त

हमारी जिंदगी को कितना खूबसूरत बना देता है। तो अपने पक्के दोस्तों को पास बिठा लीजिए, टिफिन शेयर करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर नॉनस्टॉप चलने वाला है। आपके इस कार्यक्रम में दोस्तों के लिए एक धमाकेदार गाना।

रेडियो के इस सफर में आगे बढ़ते हुए आइए गहराई से समझे कि बच्चों के जीवन में एक सच्चे मित्र का होना आखिर क्यों इतना जरूरी है और महत्वपूर्ण भी क्यों होता है। जब एक बच्चा अपने परिवार से बाहर निकलकर स्कूल की दुनिया में कदम रखता है तो दोस्ती ही वह पहला रिश्ता है जिससे वह अपनी समझ से चुनता है। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि बचपन और किशोर अवस्था के दौरान दोस्त केवल हमारे खेलने कूदने के साथी नहीं होते बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व के विकास का एक अहम हिस्सा होते हैं। दोस्तों के साथ रहना, मिलकर खेलना, एक दूसरे की बात सुनना और छोटी मोटी असहमति के बाद दोबारा गले मिलना, यह सब बच्चों को सामाजिकता, संयोग और आपसी सम्मान का पहला पाठ पढ़ाता है। अकेले

अपन बच्चों की आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है, लेकिन एक अच्छा और वफादार दोस्त उनके भीतर असीम ऊर्जा, सुरक्षा की भावना और आगे बढ़ने का हौसला भर देता है।

बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल अगस्त के पहले रविवार को ही फ्रेंडशिप डे क्यों मनाते हैं? आइए आज आपको इसकी एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। फ्रेंडशिप डे की शुरुआत सबसे पहले 1945 में अमेरिका में हुई थी, जिसे एक ग्रीटिंग कार्ड कंपनी ने शुरू किया था। देश में अगस्त के पहले रविवार को ही इसे मनाने का अलग ही मजा है। स्कूल के दिनों में रंग बिरंगी फ्रेंडशिप बैंड बांधकर एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देना और अपनी दोस्ती की कसम खाना इस दिन की सबसे प्यारी और यादगार बातें होती है। आइए

अब बात करते हैं स्कूल के उन सुनहरे दिनों की जहां दोस्ती की असली नींव पड़ती है। क्लासरूम की आखिरी बेंच पर बैठकर टिफिन में मैगी या पराठे शेयर करना, एक दूसरे से पेंसिल और इरेजर मांगना और परीक्षा के समय चुपके से सवाल दिखाना, ये सब हमारी दोस्ती की अनमोल यादें हैं। कई बार छोटी छोटी बातों पर दोस्तों से झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में सब ठीक हो जाता है और फिर से दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। याद रखिए बच्चों, एक सच्चा दोस्त वही है जो पढ़ाई में आपकी मदद करे, आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे और आपको कभी भी किसी गलत राह पर ना जाने दे। लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों, क्या हर वह इंसान जो आपके साथ खेलता है आपका सच्चा दोस्त हो सकता है? यहाँ हमें थोड़ा संभल कर सोचने की जरूरत है। महान दार्शनिकों और लेखकों ने हमेशा कहा है कि दोस्ती की परख हमेशा पूरे वक्त में होती है। एक सच्चा दोस्त वही है जो ना केवल आपकी खुशियों में शामिल हो, बल्कि जब आप किसी मुसीबत में हो या पढ़ाई में पिछड़ रहे हो तो आपका हाथ पकड़कर आपको सही रास्ता दिखाए। सच्चा दोस्त वह नहीं जो आपको किसी गलत काम या जिद के लिए उकसाए। सच्चा दोस्त तो वे पहरेदार है जो आपको किसी भी गलती से बचा कर रखे। अगर आपका कोई दोस्त आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है, आपकी इज्जत करता है और आपके माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना सिखाता है, तो समझ लीजिए कि आपने दुनिया की सबसे कीमती दौलत कमा ली है। इसके अलावा बच्चों, सिर्फ इंसान ही नहीं, कभी कभी हमारे घर के पालतू जानवर या हमारे माता पिता और शिक्षक भी हमारे सबसे बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ हमसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं।

नन्ही दोस्तों, महान लेखक विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि सच्चा मित्र वही है जो आपके बुरे वक्त में भी आपका हाथ न छोड़े। आइए सुनते हैं दोस्ती को समर्पित एक छोटी सी प्यारी सी कविता। सुख में जो हंसे, दुख में सो रोए, किस्मत वालों को ही ऐसी दोस्ती मिलती है जो अपने हो। रंग बिरंगे धागों से सजी ये कलाई है, देखो बच्चों आज फ्रेंडशिप डे आई है। बच्चों, केवल स्कूल या मोहल्ले के दोस्त ही नहीं, बल्कि हमारे माता पिता और हमारे प्यारे जानवर भी हमारे सबसे अच्छे और पक्के दोस्त हो जाते हैं जो बिना किसी शर्त के हमसे प्यार करते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस शो की जान है, यानी बच्चों के जीवन में दोस्ती का असल महत्व क्या है। जब एक बच्चा पहली बार स्कूल की दहलीज पर कदम रखता है तो माँ का आंचल छूटने का जो डर होता है उसे कौन दूर करता है? वो कोई और नहीं बल्कि बेंच पर बगल में बैठा आपका वही सहपाठी होता है जो आपको अपनी रबर शेयर करता है और पूछता है, दोस्त बनोगे? यही दोस्ती, यही छोटी सी शुरुआत बड़े होकर अटूट बंधन बन जाती है। दोस्तों, सिर्फ इसीलिए जरूरी नहीं कि आपको क्लासरूम में बातें करने के लिए कोई पार्टनर मिल जाए या आप मिलकर कोई शैतानी कर सके। दोस्तों का असली महत्व इसमें है कि यह आपको विश्वास, वफादारी और परोपकार सिखाती है। जब आप अपने दोस्तों के साथ अपना टिफिन आधा आधा बांटते हैं तो आप अनजाने में ही सही दुनिया को यह सीख दे जाते हैं कि बांटने से खुशियाँ कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। एक अच्छा दोस्त आपकी ताकत बनता है, आपकी कमियों को मजाक उड़ाने की बजाय सुधारने में मदद करता है। और जब आप किसी खेल में हार जाते हैं तो आपकी पीठ थपथपाकर कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार हम जीतेंगे। यही वो ऊर्जा है जो बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत और खुशहाल बनाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में दोस्ती का वास्तविक महत्व क्या है और यह हमारे मानसिक व सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करता है? मनोवैज्ञानिक और जीवन के अनुभव यह सिखाते हैं कि एक सच्चा दोस्त केवल मस्ती और खेलकूद का साथी नहीं होता बल्कि वह हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक भी होता है। जब कोई बच्चा अपने किसी डर, अपनी किसी असफलता या अपनी खुशी को अपने दोस्त के साथ साझा करता है तो उसका आधा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। एक अच्छा दोस्त हमें अनुशासन सिखाता है, टीमवर्क की भावना सिखाता है और सबसे बड़ी बात, वह हमें यह सिखाता है कि कैसे अकेलेपन से लड़कर एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए। याद रखिए बच्चों, एक सच्चा दोस्त वही है जो सिर्फ आपकी खुशियों में शामिल ना हो बल्कि पढ़ाई में आपकी मदद करे, आपके मुश्किल और बुरे समय में चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहे और आपको कभी भी किसी गलत रास्ते या गलती करने से रोके। पक्के यार सच्ची यारी के इस खास सफर में अब वक्त हो चला है एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी की ओर जाने का। यह कहानी है दो पक्के दोस्तों की।

राहुल और कबीर। राहुल थोड़ा शर्मीला था और पढ़ाई में बहुत होशियार था, जबकि कबीर खेलकूद में आगे और बहुत हसमुख स्वभाव का था। दोनों स्कूल की एक ही क्लास में पढ़ते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। क्लासरूम की आखिरी बेंच से लेकर खेल के मैदान तक उसकी दोस्ती पूरे स्कूल में मिसाल बन जाती थी। कहानी में मोड़ तब आया जब स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। राहुल दौड़ने में कमजोर था, लेकिन कबीर ने जिद पकड़ ली कि वह राहुल को भी अपने साथ 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा दिलाएगा। कबीर रोज सुबह राहुल को जल्दी उठाता, उसे मैदान पर दौड़ाता और उसका हौसला बढ़ाता। परीक्षा के दिनों में राहुल भी कबीर की गणित के सवालों को हल करने में मदद करता। दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को अपनी ताकत बना रहे थे और यही एक सच्ची और पक्की दोस्ती की असली पहचान होती है। लेकिन बच्चों, असली दोस्ती की परीक्षा तो तब हुई जब खेल के दिन से एक हफ्ता पहले कबीर का पैर खेलते वक्त जोर से मुड़ गया और डॉक्टर ने उसे दौड़ने से सख्त मना कर दिया। कबीर बहुत उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महीनों मेहनत की थी। उस मुश्किल घड़ी में राहुल ने कबीर का हाथ पकड़ा और कहा, कबीर तू उदास मत हो, अगर तू नहीं दौड़ सकता तो कोई बात नहीं, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मैं तेरे लिए दौड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। अगले हफ्ते मैदान पर राहुल ने पूरी जान लगा दी और कबीर मैदान के किनारे बैठकर अपनी बैसाखियों के सहारे चिल्ला चिल्ला कर उसका हौसला बढ़ा रहा था। जब राहुल ने रेस जीत ली और वह मेडल लेकर सीधे कबीर के पास भागा तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बस मेडल आपस में बांट लिया और समझ गए कि असली जीत सिर्फ एक मेडल की नहीं होती, बल्कि उस दोस्त की होती है जो मुश्किल वक्त में कभी हाथ

तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो आपकी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाए और आपके हर सुख दुख में चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहे। अपने दोस्तों से प्यार कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और हमेशा एक दूसरे के पक्के यार बने रहिए।

दोस्तों, हम इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे जानना और समझना हम सभी के लिए बेहद आवश्यक है। 6 अगस्त के दिन को पूरी दुनिया हिरोशिमा दिवस के रूप में याद करती है। प्यारे बच्चों, जब हम शांति, मेलजोल और दोस्ती की बातें करते हैं, तो यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि युद्ध और नफरत इस दुनिया के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज हम बहुत ही सरल शब्दों में यह जानेंगे कि हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था और इस ऐतिहासिक घटना से हम सभी बच्चों को क्या बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज से ठीक 31 साल पहले यानी 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। दुनिया के कई देश आपस में भीषण युद्ध में उलझे हुए थे। उसी दौरान मानवता को झंझोर देने वाली एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। दोस्तों, आज के इस रेडियो कार्यक्रम सुनहरी यारी और दोस्ती का आसमान बाल जगत कार्यक्रम में हमने महसूस किया कि दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जिंदा दिली एहसास है। अपने दोस्तों की कदर कीजिए। अगर कभी किसी बात पर अनबन हो जाए तो सबसे पहले आगे बढ़कर सॉरी बोलकर गले मिल लीजिए, क्योंकि अहंकार से बड़ी कोई दीवार नहीं होती और प्यार से बड़ा कोई पुल नहीं होता। आप अपने माता पिता को भी धन्यवाद दीजिए जो आपके सबसे पहले और पक्के दोस्त हैं। रेडियो के सुरीले सफर को यही देते हैं विराम। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब खेलिए और अपने दोस्तों के साथ इस दिन को यादगार बनाइए। आप सभी को रेडियो स्टेशन की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बाय बाय।

0: नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल जगत। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आप सुनने जा रहे हैं पंडित भजन सुपोरी का संतूर वादन। इनके साथ पखावज पर संगत किया है दालचंद शर्मा ने। तो आइए सुनते हैं पंडित भजन सुपोरी का हिंदुस्तानी शैली में गाया राग नट भैरव।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

दोस्तों कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं दिल से बनते हैं। हर मोड़ पर जो साथ चले वही अपने लगते हैं। दोस्ती वो एहसास है जो उम्र भर महकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और आज के इस सुहाने सफ़र में मैं हूँ आपके साथ सोनिया। दोस्तों आप सभी को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप अभी इसी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं 232540 या 232558 पर। एसटीडी कोड है 03192।

तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं बातों व गीतों का ये सिलसिला और लेते हैं आज का ये पहला कॉल। हेलो फरमाइश। हेलो हेलो फरमाइश। लगता है किसी कारणवश हमारे इस श्रोता से हमारा संपर्क टूट चुका है, तो चलिए जब तक कोई कॉलर हमसे जुड़ते हैं ये गीत सुन लेते हैं।

0: हेलो।
1: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
0: नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन
0: सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहे हूँ।
1: जी शेख हैदर खान जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
0: गाना सुना दीजिए। फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त था।
1: हाँ जी,
0: आपके आवाज में गीत है छलकाए जाम, आइए आपकी आंखों के नाम होठों के नाम।
1: जी जी जरूर सुनवाएंगे ये गीत। क्या करते हैं आप?
0: मैं तो MP अभी रहता हूँ और मतलब आपके आकाशवाणी का बहुत पुराना श्रोता हूँ।
1: जी जी, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
0: खेती किसान से जुड़ा हुआ मैडम मैं तो।
1: अच्छा, तो खेतों में काम करते हुए गाने वगैरह भी सुनते रहते हैं?
0: गाने तो रेडियो की से तो बहुत पुरानी दोस्ती, 1980 से जुड़ा हुआ हूँ मैडम मैं।
1: अच्छा, तो कौन कौन से कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आते हैं?
0: यही प्रोग्राम ज्यादा अच्छा लगता है,
1: फोन इन प्रोग्राम।
0: वो जो 2:30 बजे चलता है उसमें तो हमारा फोन लगता भी नहीं है।
1: अच्छा, तो आपने अपना नंबर दर्ज करवाया होगा उसमें?
0: उसमें कराया था मैडम, लेकिन एक ही बार प्रोग्राम आया हमारा, जिसके बाद में उधर से फोन नहीं आया।
1: चलिए, उम्मीद करते हैं अगली बार आपको जो यहाँ से कॉल जरूर जाएगा। बहरहाल आप सुनवा रहे हैं, आपको आपकी पसंद का ये गाना।
0: ओके ओके, थैंक यू, है ना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंसमेल बुगड़ा।
0: जी पूर्ण वर्मा जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ और वहाँ का मौसम कैसा है?
0: जी हम भी अच्छे हैं और यहाँ का मौसम भी अच्छा है। कभी कभी धूप खिली रहती है, कभी बारिश आ जाती है। और बताइएगा आज के कार्यक्रम में कौन सा गाना हम आपको सुनवा दें?
1: मैडम आज सबसे पहले तो आपको और तमाम श्रोताओं को जो मित्रता दिवस है तो उसकी हार्दिक शुभकामना मैडम।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को भी हमारी ओर से मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: और उसमें एक फिल्म का नाम है हमसे मिले तुम और उसमें गाने के बोल है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो उसमें एक गाना है सावन आयोरी
0: जी जी
1: जी, ये गाना सुना सुनाना चाहता हूँ। और मैं आपसे जो मेरे अधिकारी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उन तक मैं छोटी सी बात पहुँचाना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त दे दे तो।
0: जी जी जल्दी से बता दीजिए।
1: जी मैडम जो पहले आप ये अब ऐसा होता है कि हम फोन मिलाते ना तो मैडम इसमें क्या है कि तो नौकल घंटी जाने लग गई है, जो अभी आप जैसे मेरे से बात कर रही है तो उस टाइम नौकल घंटी जा रही होगी। बीच में मैडम ये बोलता है इसमें टू टू टू टू, तो अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये थोड़ा ठीक करे क्योंकि श्रोता हमारा नाम लेते हैं ना तो नाम हमको सुनाई नहीं देता, इसलिए मैं ये छोटी सी बात रखना चाहता हूँ मैडम।
0: जी जी इस पर हम ज़रूर गौर करेंगे। और आपने बात की थी फ्रेंडशिप डे की, तो जानना चाहेंगे आपके जीवन में दोस्तों का क्या महत्व है?
1: जी मैडम जीवन में दोस्तों का यही महत्व है क्योंकि हम तो आकाशवाणी रेडियो को ही हमारा दोस्त मानते हैं और उसी पर हमें इतने दोस्त मिले हैं विजयपुरम से लेकर और देश के ऐसा कोना कोई नहीं बचा है जो रेडियो के माध्यम से हमारा दोस्त नहीं है और उनसे बातचीत भी होती है उनके बारे में। रेडियो के माध्यम से तो जाना ही जाता है और एक दूसरे के नंबर के माध्यम से भी हमारी बातचीत होती रहती है तो उनके माध्यम से भी हमें बहुत कुछ मिला है मैडम रेडियो के माध्यम से।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके पूर्ण वर्मा जी। अब
1: और
0: पूरी करें,
1: दोस्तों को याद कर सकता हूँ मैडम?
0: अच्छा जल्दी से याद कर लीजिए अपने दोस्तों को।
1: जी मैडम सबसे पहले तो आप हैं,
0: शुक्रिया।
1: और विजयपुरम से पूर्णिमा मैडम है, और शिवालोवाड़ है भगवान सिंह जी, अभिनाथ जी, रमेश पात्रे, अमल, बिमल, राकेश है और जितने भी कॉलर लाइव आपसे बातचीत करेंगे जिसका नाम छूट गया उन श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ मैडम।
0: चलिए पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: मेरी प्यारी प्यारी मैम को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। ये प्यारी सी आवाज
1: और
0: किसकी है?
1: मैं ग्राम गुन्नौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ। और हैप्पी फ्रेंडशिप डे मैम सभी श्रोताओं को और आपको भी।
0: थैंक यू सो मच। क्या करते हैं आप?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: अच्छा, तो उसमें रुचि है आपकी।
1: हाँ
0: जी। और आज के प्रोग्राम में कौन सा गाना सोच रखा है आपने?
1: हाँ मैम, उससे पहले आज फ्रेंडशिप डे भी है और मेरे दोस्त का जन्मदिन गंगाधर सावनकर जी है महाराष्ट्र से, आज उनका जन्मदिन है। तो मेरे परिवार की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना मैम। ओ ऐसे रेडियो के साथ जुड़े रहे और आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहो रहते रहे,
0: जी, बहुत बहुत
1: यही
0: शुक्रिया
1: शुभकामना है।
0: जी।
1: और
0: तो
1: हाँ उनको लिए उनके लिए मैम गाना डेडिकेट रहेगा, तो उनका नाम है साया, जन्मदिन का गाना है वो बजा दीजिए।
0: अच्छा, हमारी ओर से भी उनको ढेर

0: जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज फ्रेंडशिप डे है, तो जानना चाहेंगे आपके जीवन में जो दोस्त है वो उनका स्थान कहाँ पर है?
1: मैम बहुत दोस्त मिले हैं ना हमारे, एक अभिश्वेता बोल रहे थे कि सभी कोने से हमें दोस्त मिले, उसी तरह मुझे भी सभी कोने से दोस्त भी मिले हैं, सभी नाते मुझे मिले हैं। भाई का मिला है, दोस्त का मिला है, पापा के मिला है, बहन का मिला है, सभी दोस्त मतलब नाता मुझे मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ।
0: चलिए ऐसे ही हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कीजिए। अब हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: ओके बाय बाय।
0: बाय।

0: दोस्तों, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से अंतराल के बाद बने रहिएगा हमारे साथ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, ब्रेक पूरा हो चुका है और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके मनपसंद लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। इस कार्यक्रम से हमसे जुड़ने के लिए कॉल कर सकते हैं आप 2-3-2-5-4-0 या 2-3-2-5-5-8 पर। चलिए अब और वक्त ज़ाया ना करते हुए बातें करते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
2: हेलो, नमस्कार बहन जी।
1: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
1: जी, मध्य प्रदेश से कॉल आया है, वहाँ का मौसम कैसा है?
2: मौसम बढ़िया है, आसमान में बादल हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। बढ़िया मौसम है, खुशनुमा मौसम।
1: जी जी, इस खुशनुमा मौसम में कौन सा वो प्यारा सा गीत आपने सोच रखा है सुनने के लिए?
2: फिल्म का नाम रहेगा उजाला।
1: जी जी,
2: और गाने के बोल है, झूमता मौसम मस्त महीना, चांद की गोरी एक हसीना।
1: जी, बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है। वैसे भी सावन का महीना है ना।
2: जी जी,
1: चलिए अब पूरी कर रहे हैं आपकी ये फरमाइश।
2: तो कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ बहन जी?
1: जल्दी से याद कर लीजिए
2: बहन जी। सबसे पहले तो हमारे मित्र हैं नरेश प्रजापति और गजराज लोधी जी, और फिर है हमारे मित्र केसरी सिंह राजपूत जी, भगवान सिंह परमार जी, रामबाबू शर्मा जी और अमर सिंह साहू जी, और रमेश प्रजापति जी सीहोर मध्य प्रदेश से, और लोकेन वर्मा जी हैं उज्जैन से, और शारदा प्रसाद जी हैं मथुरा से, राकेश जी हैं शिमला से, त्रिपुरा से हमारे मित्र हैं आशुतोष देवनाथ जी और हमारी बहन जी संगीता देवनाथ जी।
1: चलिए सभी दोस्त,
2: और इन सभी को डेडिकेट रहेगा ये गाना।
1: चलिए सभी दोस्तों के साथ सुनिएगा अपनी पसंद का ये गाना।
2: जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: नमस्ते, मैं प्रेमजीत चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, आसाम से।
0: प्रेमजीत जी, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: मैं तो अच्छे हैं मैडम, आप कैसे?
0: जी हम भी अच्छे हैं। और आपके पसंद के जो गीत है वो स्टूडियो में बैठे हैं सुनाने के लिए, बताइएगा कौन सा गाना है आज आपके पसंद का?
1: तो मैडम गाना सुना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है प्रेम प्रतिज्ञा,
0: जी
1: और गाने का बोल ऐसे है, प्यारी को भी कमी नहीं करना।
0: जी बहुत ही प्यारा गीत है। और असम की वादियों से आपने कॉल किया है, कैसा मौसम है वहाँ का?
1: मैडम मेरा आश्रम तो धूप तेज चल रहा है, एक बड़ा कपित

0: ब्राक बेली है और दूसरा ब्रह्मपुत्र बेली है। ब्रह्मपुत्र बेली में तो अभी तो फ्लैट चल रहा।
1: अच्छा,
0: हमारा ब्राक बेली में फ्लैट नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र बेली में फ्लैट चल रहा है। बहुत बड़ा फ्लैट हो गया, बहुत बड़ा फ्लैट हो गया। और अच्छा लगता है, और आकाशवाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है आपका।
1: चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, इतनी दूर से आपने कॉल किया, आप सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।
0: मैडम,
1: हाँ जी,
0: मित्रों को नाम देना चाहता हूँ, आप मेरे तो अनुमति दीजिए मैडम।
1: जल्दी जल्दी से याद कर लीजिए अपने दोस्तों को।
0: पहले तो हम त्रिवेणी डिस्ट्रिक्ट से अनुपम भट्टाचार्या जी, और त्रिपुरा से मेरा बड़ा भैया आशुतोष देवना जी, और अविनाश चली जी मेरा छोटा भैया, और नितिन चक्रवर्ती बंगाली से, और दिल्ली से मेरा

0: आकाशवाणी हेलो कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है आपका।
1: चलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, इतनी दूर से आपने कॉल किया, आप सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।
0: मैडम
1: हाँ जी
0: मैं मित्रों को नाम देना चाहता हूँ, आप मेरे तो अनुमति दीजिए मैडम।
1: जल्दी जल्दी से याद कर लीजिए अपने दोस्तों को।
0: पहले तो हम डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अनुप कुमार भट्टाचार्या जी और त्रिपुरा से मेरा बड़ा भैया आशुतोष देवना जी और अविनाश तेली जी मेरा छोटा भैया और नितिन चक्रवर्ती बंगाली से और दिल्ली से मेरा बहुत अच्छा दोस्त बड़ा भैया धर्मवीर भट्टाचार्य जी और सप्तमी विष्णु सिंधु जी और भगवान विजयक्रम सुन रहा है सबको लेकर सुनिए मैडम और मैडम मेरा बहुत अच्छा लगता है।
1: चलिए सब मिलकर सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद पर।
0: ठीक है आप अच्छे रहे और आप सबको नमस्कार
1: नमस्कार।

हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो हेलो।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।
1: मैं ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गाना है आपकी पसंद का?
1: जी दीदी, दूर की आवाज़ फिल्म का है, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता जुगनू मुगनू, ऐसा कुछ गीत है दीदी। और आज हमारे मित्र का जन्मदिन है, सावन कर गंगाधर जी है महाराष्ट्र से, उनको जन्मदिन की मैं बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना दे रहा हूँ आपके कार्यक्रम के माध्यम से दीदी। और आज फ्रेंडशिप डे भी है, इसके लिए भी आप सभी दोस्तों को मतलब शुभकामनाएं हैं।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद करते हैं आपके सभी दोस्तों तक ये संदेश पहुंच चुका होगा, और आपका दोस्त का भी बर्थडे है और साथ ही फ्रेंडशिप डे भी है, तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप?
1: जी दीदी, अब हम उनके पास तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत दूर है, लेकिन ऐसे ही वीडियो कॉलिंग करके उनसे बात करके उनको जन्मदिन की शुभकामना दे देंगे दीदी।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और क्या करते हैं आप
1: दीदी? हम खेती किसानी करते हैं।
0: अब खेतों में क्या लगाया है आपने?
1: दीदी सोयाबीन मक्का की बुआई हो चुकी है, सवा एक महीने की फसल हो चुकी है और अभी मतलब फूल पे है सोयाबीन तो दीदी, और मक्का तो बहुत छोटी है अभी।
0: अच्छा, तो साथ में रेडियो वगैरह भी सुनते रहते हैं,
1: जी
0: गाने
1: दीदी
0: वगैरह?
1: हमेशा सुनते हैं, रेडियो का तो हम बचपन से लगाव है दीदी, बहुत ज्यादा सुनते हैं।
0: चलिए ऐसे
1: और
0: ही।
1: आपके कार्यक्रम के माध्यम से दीदी, आकाशवाणी के माध्यम से मुझे पूरे भारत वर्ष से मतलब बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं दीदी।
0: चलिए, हमारी भी यही कोशिश रहती है कि जितने भी इस कार्यक्रम से जो लोग जुड़ते हैं, दूर दूर से जो दो लोग जुड़ते हैं, वो सभी मित्रता मतलब दोस्ती की खातिर जो प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं और अपने मनपसंद गीत जो है इसमें सुनवाए जाते हैं उनके, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो और आगे भी इसी तरह जुड़े रहिएगा हमारे इस आकाशवाणी श्री विजयपुरम
1: जी
0: से।
1: दीदी, और दीदी पूर्णिमा दीदी है विजयपुरम से, उनको भी याद करना चाहेंगे। और तनुश्री बिटिया है, गंगाधर जी, गजराज लोधी जी, केसर सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगेलाल चंदेल जी, भरत सिंह अहिवार जी, इन सबके साथ पूरन वर्मा जी, राकेश जी, पूनम दीदी, कानपुर से अविनाश जी, आशुतोष जी।
0: चलिए सब मिलकर सुनते हैं ये गीत।
2: धन्यवाद। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और

0: हेलो फरमाइश
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम आपका नेम है श्रोता शिवा लोहट, MP विदिशा से बात कर रहा हूँ। मैम सभी सुनने वालों को मेरा प्यार नमस्कार।
0: जी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम का अंतिम कॉल है, बताइएगा जल्दी से कौन सा गाना है।
1: जी मैम मैं सुनना चाहूँगा खुदगर्ज मूवी का, कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती।
0: जी जी बहुत ही प्यारा गीत।
1: जी ये गाना मैं डेडिकेट करूँगा सभी मित्रों को, जितने भी मित्र मुझे सुन रहे हैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, सभी लोगों को फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और समस्त स्टाफ को आपके।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इतनी दूर से कॉल किया। आप सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: जी धन्यवाद।

दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। चूँकि कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, तो चलने से पहले यही कहना चाहेंगे कि दोस्ती वो एहसास है जो हर रिश्ते से ख़ास होता है। दोस्त चाहे दूर हो, फिर भी दिल के पास होता है। मुश्किलों में जो थाम ले हाथ, वही सच्चा दोस्त होता है। ऐसे दोस्तों का साथ मिले तो जीवन खुशहाल बन जाता है। फ्रेंडशिप डे की अनंत शुभकामनाओं के साथ सोनिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

सभी श्रोता बंधुओं को रीता बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में यादगार लम्हों की झलकियों को लेकर हम हाजिर हैं आप सबसे रूबरू होने के लिए। ये माना कि जिंदगी है चार दिन की, पर बहुत होते हैं यारों ये चार दिन भी। आइए इन अनमोल पलों को हम और आप मिलकर और खुशनुमा बनाएं, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है।

साथियों, जीवन के सफर में एक इंसान को चार दौर से गुजरना होता है और बचपन का दौर सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब एक बच्चे में अच्छी आदतें विकसित होती हैं और उसे जीवन भर के लिए एक सही आकार देती है। बचपन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। क्या उत्साह, क्या उल्लास, ना कोई बैर, ना कोई गैर, ना कोई गम, ना कोई फिक्र, सब कुछ कितना सच्चा होता है। उन दिनों यहाँ पर मनोरंजन के साधन नाम मात्र के थे। मुझे याद है माउंट बैटन टॉकीज में सिनेमा देखने के लिए सबसे सामने वाली सीट पर बैठना और फिर पिताजी के डर से छुप छुप कर बिना का गीतमाला का लुफ्त उठा

बच्चों को संस्कारी बनाने में माता पिता की भूमिका सबसे अहम होती है। मैं तो ये कहूँगी कि बच्चे का बनना या फिर बिगड़ना माँ बाप के हाथों बहुत हद तक होता है, और माँ बाप बच्चों के मूल्यों और व्यवहार पर गहरा असर डालते हैं। दोस्तों, माँ बाप के अलावा मेरे जीवन में दो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व का सानिध्य मिला जिन्होंने मेरे जीवन को नया मोड़ दिया। स्कूल लाइफ में मैडम अरुणा मनोहर सिंह हमारी इंग्लिश की टीचर हुआ करती थी। उनकी वाणी में इतनी मिठास थी और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व में एक ऐसा तेज और आत्मविश्वास था कि हम सब सहज ही श्रद्धापूर्वक उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। मेरे करियर जीवन में रिटायर्ड प्रिंसिपल श्रीमती बीना पारिख मेरी आदर्श रही हैं। वो बाहर से तो बहुत कठोर लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट स्वभाव की होती थी। मैडम वीना पारिख से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। दोस्तों, JNRM से ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद मैंने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर से बीएड किया क्योंकि टीचिंग जॉब मेरा पैशन था। उन दिनों गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान था, बहुत आसान था। इसके लिए मुझे कोई संघर्ष ही नहीं करना पड़ा और मैं फिर बन गई ग्रेजुएट ट्रेन्ड टीचर। मैं समझती हूँ कि बिना एक अच्छे शिक्षक के एक बच्चे का जीवन अपूर्ण रहता है। शिक्षक देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। ऐसे में एक टीचर होने के नाते हमें भी आत्ममंथन करना होगा कि गुरु की भूमिका में हम कितना खरा उतरते हैं। बच्चों के साथ मैं पिछले 45 सालों से जुड़ी हुई हूँ।

रिश्ता, ये महज एक शब्द ही नहीं बल्कि भावनाओं, विश्वास और अटूट बंधन का ताना बाना है। और जब हम रिश्ते तब और अब की बात कहें तो हम पाते हैं कि पहले लोगों में कितना अपनापन था, कितनी गहराई थी और समर्पण की भावना हुआ करती थी और रिश्ते आखिर तक निभाए जाते थे। मुझे याद है एक चिट्ठी के लिए पोस्टमैन का हम कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते थे और इस इंतज़ार में कितना मीठा एहसास छुपा हुआ होता था। मगर आज की बात कुछ और है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के चलते रिश्ते ऑनलाइन बनते भी हैं और फिर बिगड़ते भी हैं, या यूं कहें कि रिश्तों में संवाद तो बढ़ा है लेकिन संवेदनशीलता कम हो गई है। आइए मेरी पसंद का ये गीत सुनें।

रिश्ते की बात चली तो साथियों, रेडियो से मेरा जुड़ाव और अटूट रिश्ता रहा है। इसके बारे में मैं आपसे अपना अनुभव ज़रूर साझा करना चाहूँगी। बचपन से मैं रेडियो की फ़ैन रही हूँ। आकाशवाणी से प्रसारित सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते थे, आज भी अच्छे लगते हैं। रेडियो के प्रति मेरा रुझान, जुनून धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि कॉलेज पास करने के बाद आकाशवाणी में कैजुअल अनाउंसर बन गई। इसके बाद बतौर कैजुअल न्यूज़ रीडर 30 सालों तक मुझे अपनी सेवाएं देने का सुअवसर मिला। मैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम की बहुत आभारी हूं, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। रेडियो ने सफलतापूर्वक 90 वर्ष पूरे किए हैं। आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र ऐसे ही फलता फूलता रहे और खूब तरक्की करे, यही मेरी कामना है। आइए ये खूबसूरत गीत सुनें।

जिंदगी एक पहेली है, कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। जी हाँ, जीवन एक पहेली ही तो है। ये सुख दुख अनसुलझे अनुभवों से भरी होती है, जिसे पूरी तरह से समझना या फिर समझाना मुश्किल होता है। माना कि तू अस्त व्यस्त है, माना कि तू अस्त व्यस्त है, पर ऐ जिंदगी तू जबरदस्त है।

0: चले जाए अकेले कहां जिंदगी।
1: सफर में भीड़ तो होगी, सफर में भीड़ तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो भाई, सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते रास्ते कहाँ बदलते हैं, किसी के वास्ते रास्ते कहाँ बदलते हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। इन दिनों हम प्रसिद्ध कवि बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहे हैं। ये वो गीत है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। आइए देश के वीर जाबाजों को समर्पित इस गीत का आनंद लें।

0: मुझे उम्मीद है आपको मेरे पसंद के गीत अच्छे लगे होंगे। इससे पहले कि आपसे इजाजत मांगू, मैं अपना एक विशेष अनुभव आपसे साझा करना चाहूंगी, और वो है समय का सदुपयोग। ये हमारे जीवन को सफल, अनुशासित और खुशहाल बनाता है। बीते हुए पल लौटकर कभी नहीं आते, इसलिए हम सबको हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। आज बस इतना ही। अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगी। आप सब स्वस्थ रहें, आबाद रहें, यही मेरी कामना है। नमस्कार, जय हिंद।
1: मेरी पसंद आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी रिटायर्ड प्रिंसिपल श्रीमती रीता बैनर्जी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी पसंद।
3: बच्चे आपके सामने पढ़ते हैं, आप खुद अपना मोबाइल फोन भी दूर रख दीजिए, टीवी भी बंद कर दीजिए। जब अभी डैडी खुद आईपीएल देखते हैं और बाद में बच्चे को बोलते हैं तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है, तुम पढ़ाई करो, तो बच्चा एक अजीब तरीके से आपको देख के आपके अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता है, पापा व्हाट आर यू डूइंग। सो सबसे पहले मैं बार बार काउंसलर मैडम से इत्तफाक रखूंगा कि योर किड्स फॉलो यू, सी यू आर देयर रोल मॉडल्स। तो एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब पेश खिदमत है कार्यक्रम गजल। कार्यक्रम की पहली पेशकश मंदिरा लहरी की आवाज़ में, कलाम है जहीर की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मलयालम कार्यक्रम। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तेलुगु कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണിയുടെ ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मलयालम कार्यक्रम। ये है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है।

0: भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसुलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। अमरीका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: The Prime Minister added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. He said that weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event. The participants included governors of states, chief ministers of states, Mai Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. Indian Ambassador to the US Vinay Mohan Quatra has stressed that Pakistan must first dismantle the terror infrastructure that it has built if it wants India's cooperation on bilateral issues. Pakistan had recently convened a conference in Islamabad to protest India's decision to hold the Indus Waters Treaty in abeyance. In an article, Mr. Quatra criticized a former foreign minister of Pakistan for threatening war against India if Islamabad's demands on the Indus River system are not met. Ambassador Quatra stated that threatening war against India to distract from its internal problems has become a standard policy option for Islamabad. Uzbekistan's Minister for Foreign Affairs Saidov Bakhtiyor Odilovich will undertake an official visit to India from today until the 5th of this month. According to the Ministry of External Affairs, during his visit, Odilovich will call on President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan and also meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. He is also scheduled to attend a business forum in Delhi. Amid widespread havoc caused by heavy rain in Kerala, the India Meteorological

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत इस समय आप सुन रहे हैं ताहिरा सईद की आवाज में चंद गजलें।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

0: बहनों, जीवन में कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। इससे या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, और जीवन में दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। और इस प्यारे से सुविचार के साथ आपकी सखी, आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा आपका स्वागत करती है आपके अपने कार्यक्रम घर संसार में। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं एक भेंट वार्ता से, जहां हमें मौका मिला डॉक्टर विनीता शाजू जी से स्तनपान सप्ताह से जुड़ी बातें जानने का। और इस विषय पर चलिए हमारी उनसे हुई बातचीत आपको सुनवाते हैं और जानते हैं इस विषय में थोड़ा और विस्तार से।
1: तो बहनों, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनीता शाजू। तो आइए स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में उनसे कुछ सवाल किए जाएं। तो नमस्कार डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार रीमा जी।
1: तो डॉक्टर, मैं आपसे सबसे पहले एक ही सवाल करना चाहूँगी कि एक नवजात शिशु को कौन कौन सी जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो हमें देनी चाहिए।
2: एक नवजात शिशु को सबसे मुख्य और प्राथमिक ज़रूरत उसकी होती है माँ का स्तनपान।
1: अच्छा।
2: इसीलिए जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, तुरंत उसके बाद हम लोग सबसे पहले एडवाइस करते हैं कि बच्चे को माँ का स्तनपान दिलाया जाए। अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू पैदा हुआ होता है तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि पैदा होने के आधे घंटे के अंदर
1: अच्छा।
2: बच्चे को माँ की छाती से लगा दिया जाए ताकि बच्चा स्तनपान ले सके। और अगर सपोज़ मदर को सिजेरियन डिलीवरी के थ्रू बच्चा पैदा होता है तो डिलीवरी के 1 से 4 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का स्तनपान दिलाया जाए। ऐसा क्यों हम लोग कहते हैं बोलने से? माँ का जो स्तनपान होता है बच्चे के लिए अमृत समान है। जो
1: अच्छा।
2: ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क में वो सारे गुण मौजूद होते हैं जो हमारे शिशु को एक हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। उसे कई तरह की बीमारियों से बचाए रखता है।
1: अच्छा।
2: उसे बहुत सारे एलर्जीज और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है।
1: अच्छा।
2: तो जैसा ही एक न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है, हम उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एडवाइस करते हैं और माँ के स्तन से लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि माँ और बच्चे के बीच में भी एक बॉन्डिंग शुरू हो जाता है और सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग का वहीं से शुरुआत शुरू हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बच्चे के लिए ज़रूरत

0: इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग में लगाना.
1: अच्छा,
0: दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फिर उसके साथ ही साथ जो है बेबी का न्यूबॉर्न केयर देना, फिर बेबी को जो है पैदा होते ही हम लोग बेबी को जो है टाइमली वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं, टीकाकरण शुरू करवाते हैं, जो बराबर समय अनुसार एज पर हम लोग का गवर्नमेंट के शेड्यूल के हिसाब से बच्चे को उनका टीकाकरण मिलता है. तो विद द ब्रेस्ट फीडिंग जब प्रॉपर वैक्सीनेशन भी होता है तो उनको कई बीमारियों से और जानलेवा बीमारियों से प्रोटेक्शन होता है. ये सारा इम्पॉर्टेंट केयर उनको मिलना चाहिए.
1: अब यहाँ पे हम स्तनपान की बात करते हैं, तो एक माँ को लगभग कितने समय तक अपने बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए?
0: तो जैसे ही मैंने कहा, पैदा होते ही बच्चे को माँ के स्तन में लगा दिया जाता है. स्तनपान का हम लोग एस्टैब्लिशमेंट करते हैं और हम एडवाइस करते हैं कि लगभग 2 साल तक माँ ज़रूर अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है. ऐसा क्यों बोलने से, पहला 2 साल है जब मैक्सिमम बच्चे का ब्रेन ग्रोथ होता है.
1: अच्छा.
0: और माँ के दूध में ऐसे कई तत्व हैं जो बच्चे का ब्रेन का विकास में मदद करता है, हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है. तो इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि पहला 2 साल तक माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है. उसमें जन्म से पहला 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध देना.
1: अच्छा.
0: ऊपर का कुछ भी पदार्थ नहीं देना, ना कि पानी तक भी देना, सिर्फ माँ का दूध देना. दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग.
1: अच्छा.
0: क्योंकि वो पहला 6 महीना जो बच्चा का ग्रोथ होता है उसके लिए रिक्वायर्ड सारा न्यूट्रिएंट्स और सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माँ का दूध में ही अवेलेबल रहता है.
1: अच्छा.
0: तो माँ के दूध के अलावा बाहर से कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है.
1: अच्छा.
0: 6 महीना हो जाए, अब तक बच्चा जो है थोड़ा पलटी करना शुरू हो जाता है, थोड़ा उठ के बैठना शुरू हो जाता है, अभी वो एक्टिव हो जाना शुरू होता है. अब से जाके उसका जो है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, उसका डिमांड बढ़ जाता है.
1: अच्छा.
0: इसलिए हम लोग 6 महीने के बाद में बच्चे को माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार देने को एडवाइस करते हैं, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं.
1: अच्छा.
0: बट एज ए होल डेफिनेटली 2 साल तक जो है मदर ब्रेस्ट मिल्क को कंटिन्यू करने के लिए सजेस्ट करते हैं.
1: तो ये जो वक्त होता है, तो उस समय माँ का जो खान पान है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिन्हें माँ को नहीं खाना चाहिए?
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली में ये एक मिसकंसेप्शन है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर अगर कोई पर्टिकुलर आइटम खा लेगी तो बच्चे को दूध अच्छे से मिलेगा नहीं है. अगर माँ कुछ ऐसा फलाना आइटम खा लेगी तो उसे माँ को भी गैस होगा, बच्चे को भी गैस होगा. ऐसा बहुत सारा मिसकंसेप्शंस है. बट एक्चुअली में फैक्ट ये है कि ऐसा कोई भी फूड आइटम्स नहीं है जो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए मना है. क्योंकि मदर प्रेग्नेंट होने से पहले भी अपना नॉर्मल डाइट लेती थी.
1: बिल्कुल.
0: फिर मदर फुल प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल डाइट ले रही थी. तो फिर अब लैक्टेशन के दौरान, स्तनपान करने के दौरान क्यों वो चीज़ मना किया जाए? क्योंकि वो जो है प्रेगनेंसी के दौरान ही उनके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था जो भी वो खा रही थी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह. तो उनके बॉडी से वो उनके गर्भपात्र में जो एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चा पलता है ना, उसमें भी जाता है. तो बच्चा को तो माँ के कोख से ही सब कुछ मिल रहा है. तो फिर क्यों लैक्टेशन या स्तनपान के दौरान वो फलाना आइटम बंद करें? इसीलिए हम लोग बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं करते हैं कि मदर को कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन है. रादर माँ जब स्तनपान करती है तो उनको हेल्दी पौष्टिक आहार, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट उनको देना है. और ज़रूरत जो नॉर्मली वो खाती है उसे एक्स्ट्रा उनको खाना पड़ेगा. क्योंकि
1: अच्छा.
0: अभी वो एक नहीं, वो 2 जन के लिए ले रही है, अपने लिए भी और अपने थ्रू अपने ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए भी. तो उनको वो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा. तो घर के बने हुए फूड खाएँ, खूब सारी हरी सब्जियाँ खाएँ, बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स जो अवेलेबल है लीजिए. और इसके साथ ही साथ अच्छे से पानी पीजिएगा. क्योंकि मदर जब अच्छे से पानी पिएगी, लगभग 10 से 12 ग्लास पानी पीना है. जब मदर अच्छे से पानी पिएगी तो उनका बदन जो है अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगा.
1: अच्छा.
0: उनका बदन में डिहाइड्रेशन नहीं होगा. तो उससे जो है माँ के दूध में अच्छे से हाइड्रेशन रहेगा, बच्चे को अच्छा हाइड्रेशन मिलेगा.
1: अच्छा.
0: इसीलिए माँ को पानी भी अच्छे से पीना है. तो कोई भी ऐसा रोक टोक नहीं है. हाँ, एक चीज़ जो स्ट्रिक्टली प्रेग्नेंट होने के बाद से हर प्रेग्नेंट और स्तनपान करने वाली माँ को मना है, वो है अल्कोहल. कुछ भी हो जाए अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना, क्योंकि वो माँ के दूध से बच्चे को जाए और काफ़ी नुकसान पहुँचाए. तो दैट इज़ ओनली थिंग जो माँ को एकदम मना है. नहीं तो सारा डाइट, नॉर्मल डाइट, वो सब कुछ ले सकती है, कोई रोक टोक नहीं है.
1: तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि माताओं को ब्रेस्ट फीड कराते समय इतना फीड नहीं आ रहा होता है, तो उस दौरान क्या कोई चीज़ ऐसी है जो उन्हें ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे कि ब्रेस्ट फीड पड़ जाए?
0: एक्चुअली में ये भी जो है एक मिसकंसेप्शन है. अब ना जब माँ को ऐसा लगता है कि दूध हो नहीं रहा है काफ़ी, बच्चा भूखा है, बच्चा जब देखो रो रहा है, बच्चा तब देखो रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है इसलिए नहीं कि वो भूखा है. बच्चा को रोने का और भी कई कारण हो सकते हैं.

जैसे कि एक सिंपल सा कारण, बच्चा जो है सोते सोते डायपर में सुसु कर दिया, अब वो डायपर गीला हो गया, सॉयल हो गया, अब बच्चा तो बोल नहीं सकता है, तो कर खाली क्या सकता है, रो सकता है, रो रो के वो अपना डिमांड को बताएगा। या फिर बच्चा जो है गर्म कमरे में, हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे को गर्म रखना चाहिए, ठंड नहीं रखनी चाहिए, तो हम लोग कभी कभी ना बच्चे को ओवर रैप कर देते हैं। अब ये बच्चे कैसे बताएंगे कि मुझे गर्म लग रही है, तो ऑल दैट बच्चा करेगा रोएगा रोएगा रोएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यों चुप नहीं हो रहा है और छाती भी नहीं पकड़ रहा है, क्यों चुप नहीं हो रहा है, तो हम लोग जब उसके बाहर कमरे में लेके जाएंगे, थोड़ा खुला हवा में लेके जाएंगे, एकदम शांत हो जाता है। तो कारण क्या था, वो रो इसलिए नहीं रहा था कि उसे भूख लगी थी, वो रो रहा था क्योंकि उसे गर्म लग रही थी। तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि हर बार रोता वाला बच्चा सिर्फ माँ के दूध के लिए नहीं रोता है। तो जब भी माँ को ऐसा लगे कि मुझे दूध कम आ रहा है, तो सबसे पहला चीज़ जो है अपने डॉक्टर या अपने लैक्टेशन काउंसलर या जो आशा वर्कर जो उनको देखती है, उनको कांटेक्ट करें, उनको अपना ये कंसर्न एक्सप्रेस करें कि मुझे लगता है कि शायद मेरा दूध कमती हो रहा है। तो फिर हम लोग एसेस करते हैं कि एक्चुअली में कम हो रहा है कि नहीं। तो पहले हम लोग बच्चे में देखेंगे कि माँ को लग रहा है दूध कम हो रहा है, यानी बच्चे को दूध कम मिल रहा है, तो बच्चे में देखेंगे

0: लगे कि मुझे दूध कम आ रहा है, तो सबसे पहला चीज़ जो है अपने डॉक्टर या अपने लैक्टेशन काउंसलर या जो आशा वर्कर जो उनको देखती है उनको कांटेक्ट करें, उनको अपना ये कंसर्न एक्सप्रेस करें कि मुझे अच्छा। लगता है कि शायद मेरा दूध कमती हो रहा है, तो फिर हम लोग एसेस करते हैं कि एक्चुअली में कम हो रहा है कि नहीं।
1: अच्छा।
0: तो पहले हम लोग बच्चे में देखेंगे कि माँ को लग रहा है दूध कम हो रहा है या नहीं, बच्चे को दूध कम मिल रहा है, तो बच्चे में देखेंगे कि बच्चा दूध पीने के बाद कितने घंटे सोता है। अब ऐसा है कि अगर माँ को दूध कमती है तो बच्चा को दूध नहीं मिला तो भूखा पेट तो बच्चा सो नहीं सकता, है कि नहीं। तो लेकिन बच्चा अच्छे से दूध पीने के बाद 1.5-2 घंटा सो जाता है, बच्चा दूध पीने के बाद में बच्चा को अच्छे से पेशाब करता है, दिन में कम से कम 6-8 बार पेशाब करता है, बच्चा दिन में कम से कम 1-2 बार पॉटी कर लेता है, और बच्चा का जो वज़न बढ़ना होता है अच्छे से वज़न बढ़ रहा है। ये सब तभी मुमकिन है जब माँ का दूध उसे पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम माँ से ये पूछते हैं ये सारे सवाल, तो इससे माँ को समझ में आता है कि हाँ शायद दूध मिल रहा है। फिर भी जब उनका ये कंसर्न होता है कि दूध काफ़ी नहीं है, तो फिर हम लोग माँ और बच्चे को देखते हैं कि उनका फीडिंग टेक्निक सही है कि नहीं। तो भी असेस कि अगर मदर का टेक्निक गलत है तो हम लोग बता के देते हैं और प्रॉपर टेक्निक एस्टैब्लिश करके मदर को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि देखिए ये है तरीका, ज़रूर दूध आ जाता है उसमें। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि बच्चा देखो जब देखो रोता है बोल के ना पेरेंट्स या केयर गिवर क्या करते हैं, बच्चे के मुंह में ये पैसिफायर रख देते हैं या फिर बच्चे को जो है माँ का दूध कमती है बोल के पानी पिला देते हैं या कुछ और शहद चटा देते हैं। तो ये सब में क्या होता है ना कि बच्चा को जो चूसने का जो विगर होता है, जो उसके अंदर में क्यूरियोसिटी रहती है, और ऑलरेडी वो पानी पिला दिया है, प्यास उसका बुझ गया है, अब वो पानी लेने के बाद में वो क्यों दोबारा माँ की छाती में पकड़ेगा, है कि नहीं, वो उसे छोड़ देगा, वो उसे माँ का दूध नहीं चाहिए, कुछ और चटा दे। सपोज करो आपने शहद चटा दिया, तो एक तो शहद में इतना मीठा होता है, जब शहद चटा दिया तो इतना मीठा का सामने वो माँ का दूध क्यों पकड़ेगा, वो माँ का दूध नहीं पकड़ेगा। इस तरह माँ का दूध के अलावा जब कुछ और उनके मुंह में रख देते हैं, इवन पैसिफायर भी रख देते हैं ना, तो क्या चूस चूस के अपना सारा एनर्जी वो पैसिफायर पे गवा देता है। तो जब फाइनली उसको माँ के छाती में रखना होता है तो उसके अंदर में उतनी हिम्मत और विगर होती नहीं है, तो वो थोड़े से देर के लिए लेके ना वो थक जाता है और वो सो जाता है, तो माँ को लगता है कि बच्चा दूध नहीं ले रहा है। तो ये सारा है फीडिंग इश्यूज़, जो एक्चुअली में माँ को दूध कम हुआ बोल के नहीं है, इश्यूज़ है माँ का अंडरस्टैंडिंग में और सही तरीका का फीडिंग ना होगा। तो मेन है ये माँ को समझाना और माँ का कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना कि आपका दूध कभी कमती नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा तरीके में गलती है, उसको हम लोग सुधारेंगे तो ज़रूर वापस से आपका दूध अपने बच्चे के लिए काफ़ी हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अवेयरनेस, सही ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक एंड सही तरीके से कैसे कराना माँ को भी और माँ के साथ में उनका सारे केयर गिवर्स को भी।
1: अच्छा।
0: तब जाके वो सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होता है।
1: ओके डॉक्टर, जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं उनको भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है?
0: जरूर। तो अब प्री मैच्योर ना, हमारे डेफिनेशन में प्री मैच्योर तो कोई भी लेवल तक जा सकता है
1: जी।
0: तो नॉर्मली अगर कोई भी बच्चा अगर 37 वीक से पहले पैदा हो उनको हम लोग प्री मैच्योर बोलते वाले हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चा कितनी जल्दी पैदा हो गया, उनका डेवलपमेंट माँ के कोख में उस लेवल तक ही पहुँचा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 7वां महीना में या 6ठा महीना में डिलीवर हो गया तो आप सोचिए उनका विकास कितना हुआ होगा, बिल्कुल डेवलपमेंट आधा अधूरा में रुक गया होगा, है कि नहीं। तो ऐसे बच्चों को हम डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन बच्चा कितना प्री मैच्योर है, उसका जनरल कंडीशन कैसा है, उसके बेसिस में हम केस बेस केस हर बच्चे का कंडीशन देख के उनको ब्रेस्ट फीड रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा 8 महीने के बाद डिलीवर हुआ हो, दैट इज़ अराउंड से 34 वीक्स हम लोग बोलते हैं, 34 वीक्स तक माँ के कोख में रह के डेवलप होके बाहर आया है, तो इस दौरान क्या होता है कि वज़न भी उसका 1.5 किलो के आसपास या उसके ऊपर पहुँच जाता है, तो एक अच्छा वेट रहता है। और मेन चीज़ जब कोख में डेवलपमेंट होता है तो इस दौरान उनका जो सकिंग रिफ्लेक्स, चूसने का रिफ्लेक्स, सक करके दूध को मुंह में लेके स्वॉलो करने का रिफ्लेक्स, दैट इज़ कॉल्ड स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, ये डेवलप हो जाता है बाय 34 वीक्स। और साथ में दूध माँ के छाती से चूसना, दूध को निगलना और अपना सांस भी लेना, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ना, ये बाय 34 वीक्स बच्चा सीख जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो अगर 34 वीक्स के बाद में अगर बेबी पैदा होता है तो हम लोग उनको जो है डायरेक्ट मदर के ब्रेस्ट में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ट्राई करते वाले हैं।
1: अच्छा।
0: तो उससे जो है बच्चा आराम से चूस के निकाल पाता है। लेकिन अगर 34 वीक से पहले पैदा होता है तो कितना पहले पैदा होता है उस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली हम लोग मुंह से तो नहीं पिला सकते, ट्यूब फीडिंग पिलाएंगे, ओजी ट्यूब बोलते हैं, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, मुँह से एक ट्यूब पार करेंगे पेट तक और ट्यूब से पहले माँ का दूध

0: देना शुरू करेंगे। फिर जैसे जैसे बच्चा का विकास होता है, बच्चा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, उसे धीरे धीरे करके कटोरी चम्मच में लेके आते हैं, फिर उसे माँ का चाती में लगाते हैं।
1: अच्छा,
0: बेस्ड ऑन हिज डेवलपमेंट,
1: स्टेप बाय स्टेप,
0: स्टेप बाय स्टेप। बट उनके लिए प्रिफर हम लोग उन्हीं का माँ का दूध, इसको प्री टर्म मिल्क बोलते हैं, प्री टर्म मिल्क, क्योंकि बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ तो माँ का दूध भी उस प्री मेच्योर बच्चे के लिए जो जरूरत है वो उसका छाती से डेवलप होके निकलेगा, जरूर निकलेगा, और वो दूध हम लोग के बच्चे के लिए इस्तेमाल करेंगे।
1: ओके, अगर कोई माँ जो है इसी दौरान जो है किसी तरह की दवाइयों पे है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ हैं, कैंसर हो गई या किसी भी तरह की, तो उससे बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ता है?
0: जी, तो अगर माँ को कोई भी तरह का तकलीफ हो, कोई भी तरह का बीमारी, कुछ भी डाउट हो ना, सबसे पहले हम ये एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ अपने डॉक्टर को अप्रोच करें और उनसे सलाह मशवरा लेना है, क्योंकि क्या बीमारी है हमें नहीं मालूम और उसका क्या इलाज है नहीं मालूम, लेकिन हर बीमारी से डर के अपना स्तनपान कराना बंद करना वो भी अच्छा एडवाइस नहीं है, क्योंकि बीपी के लिए मदर का ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हो गया, आपने पूछा, सपोज मदर को ट्यूबरक्लोसिस है और मदर को उसके लिए इलाज चल रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं, माँ का दवाई तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस आके बच्चे में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना का ये नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है।
1: अच्छा।
0: तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, लेकिन माँ से बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस ना मिले इसके लिए बच्चे को एक स्पेशल मेडिसिन पे स्टार्ट किया जाता है।
1: अच्छा।
0: और फिर बच्चे और माँ को बराबर चेकअप में रखते हैं देखने के लिए कि दोनों का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है करके, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करते। एक चीज़ माँ को एडवाइस करते हैं कि क्योंकि सांस से फैलने वाली बीमारी होती है, तो जब ब्रेस्ट फीडिंग करें तो मास्क पहन के ब्रेस्ट फीडिंग करें, बट जरूर ब्रेस्ट फीडिंग करें। अब अगला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पूछा कि अगर माँ को कैंसर है और कैंसर की दवाई में है अगर हो, तो कैंसर एक ऐसा बीमारी जानलेवा है, उसमें तो माँ को दवाई लेना ही लेना है। एट दिस पॉइंट रिस्क वर्सेस बेनिफिट, तो कैंसर की दवा जो है ना माँ के ब्रेस्ट मिल्क से बाहर आता है, इजेक्ट होता है, तो माँ से बच्चे को वो दवा जो है मिलेगा, और कैंसर का दवाई जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंसर को मारने के लिए बनाया जाता है, तो ना वो जब नॉर्मल बच्चे को मिलेगा तो वो बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। इसीलिए अगर मदर कैंसर के मेडिसिन पे हैं तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना है, माँ का दूध नहीं देंगे। अब ये है सिचुएशन जहाँ तरह से मेडिकल इंडिकेशन, बच्चे को अभी हमें आर्टिफिशियल फीड देना होगा, क्योंकि बच्चे की माँ का दूध अब उसके लिए सेफ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ सिचुएशन जहाँ में माँ के कंडीशन के बेस में हम लोग को बच्चे को आर्टिफिशियल फीड देना पड़ सकता है।
1: तो ऐसा भी होता है कि कुछ दवाइयाँ हैं जो अगर ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की ले रही हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले लेनी है या बाद
0: नहीं,
1: में
0: ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका जो शेड्यूल दवाई है वो लोग अपना बराबर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उनको सेफ रखने के लिए उनको वो दवाई प्रिस्क्राइब किया है। हाँ, लेकिन वो जो भी मेडिसिन वो ले रही है ये लेने जाती है, उससे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और बच्चे के डॉक्टर को भी कंसल्ट करें कि कंटिन्यूटी सेफ है, कि माँ के ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो सेफली दे सकते वाले दवा माँ को दे सकते हैं कि नहीं, अंटिल शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। वन शी इज फिनिश्ड ब्रेस्ट फीडिंग देन दे कैन चेंज और नॉट, ये अगेन केस बेस केस डॉक्टर जो है कंसल्ट करके बताते वाले हैं।
1: अच्छा।
0: बट अगेन दैट इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन कि दूध नहीं पिलाना है करके।
1: अच्छा। सिर्फ एक कैंसर को छोड़ के
0: एक तो कैंसर का दवाई हो गई, फिर देयर आर अदर कंडीशंस लाइक एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, मतलब माँ को अगर कुछ तरह का मानसिक प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल कंडीशंस है जिसके लिए वो पहले से दवाई में थी, या अभी दवाई नया शुरू करा जो साइकोटिक कंडीशंस के लिए देते हैं, जैसे कि एग्जांपल है लिथियम बोल के एक दवाई होती है, ये सारी दवाइयाँ ना जो माँ के दूध से बच्चे को मिलेगा और
1: अच्छा।
0: बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, तो वैसे सिचुएशन में भी माँ का ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को नहीं देना करके एडवाइस करते हैं।
1: मतलब
0: तो
1: को हर सिचुएशन बतानी है
0: उनकी, एग्जैक्टली उनकी कंडीशन के बेसिस में बच्चे को दूध देना कि नहीं देना डिसाइड किया जाता है। एंड ऑलवेज इट इज व्हाट इज द रिस्क वर्सेस बेनिफिट, बच्चे को नुकसान ज्यादा है कि बच्चे को फायदा ज्यादा है माँ के दूध से, उस बेसिस पे केस बेस केस हम लोग डिसाइड करते हैं।
1: अच्छा।
0: बस दो जेनेटिक कंडीशंस है जिसमें बिल्कुल माँ का दूध बच्चे को नहीं देना होता है, जेनेटिक कंडीशन वो बोलते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंस, कंजेनाइटल लैक्टोस इंटॉलरेंस, सुनी हुई ना लैक्टोस इंटॉलरेंस, जो पैदाइशी ही लैक्टोस इंटॉलरेंस के साथ आया है, तो क्योंकि हमारे दूध में लैक्टोस होता है जो बिल्कुल पचेगा नहीं, तो वो एक कंडीशन। और दूसरा एक कंडीशन बोलते हैं गैलेक्टोसीमिया, ये भी एक जेनेटिक कंडीशन होता है जिसमें कि दूध डाइजेस्ट नहीं होगा, जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस, तो ये है, ये भी बच्चा पैदा होने के बाद ही पता चलता है, या फिर पहले से जेनेटिक टेस्टिंग कर लिए थे, प्रेगनेंट रहने के टाइम में कर लिए थे, मालूम चल गया तो अलग बात है। तो इसके अलावा ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, केस बेस केस मदर के कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर जो है एडवाइस करते हैं।
1: अब यहाँ पे एक और बात होती है कि महिलाएं जब बच्चा पैदा कर लेते हैं उसके थोड़ा टाइम बाद वो कुछ एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए, तो क्या सभी तरह के व्यायाम वो कर सकती हैं?

0: एक्चुअली में डिपेंड्स अपॉन कि उनका कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या था.
1: अच्छा.
0: अगर मम्मी एक नॉर्मल डिलीवरी से एक तंदुरुस्त बच्चे को पैदा करती है और माँ को भी कोई कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं था, तो विद इन फ्यू डेज अगर माँ हेल्दी फील कर रही है तो वो एक्सरसाइज शुरू कर सकती है. और ऐसा नहीं कि अभी अभी आपने डिलीवर किया आप जाके फुल हैवी एक्सरसाइजेस करें.
1: हाँ जी.
0: स्टार्ट एज लाइट एक्सरसाइजेस. अभी अभी आपने डिलीवर किया है, आप भी रिकवर कर रही है
1: जी.
0: तो स्टार्ट लाइक लाइट एक्सरसाइज, एग्जांपल वॉकिंग से शुरू करिए. शुरू में एक 10 मिनट 15 मिनट, फिर डेली 20 मिनट्स ऑफ वॉक कीजिए. यू कैन गो फॉर स्विमिंग, यू कैन गो फॉर योगा.
1: अच्छा.
0: डिपेंडिंग अपॉन आपकी बॉडी के डिमांड है कि नहीं. वही जगह अगर सपोज मदर सिजेरियन है तो सिजेरियन मदर तो इमीडिएटली कपल ऑफ डेज में नहीं जा सकती है ना. तो सिजेरियन मदर अपने आप को पहले रेस्ट दे, अच्छे से रिकवर हो, उसके बाद में से अराउंड 6 वीक्स और सो 6 हफ्ते के बाद में अगर उनको उनका सारा घाव सब भर गया है, उनके सारे प्रॉब्लम सब सेटल हो गए हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और देन स्टार्ट अगेन एट लाइट एक्सरसाइजेस. हल्का फुल्का एक्सरसाइजेस, वॉकिंग वगैरह सबसे शुरू करके फिर धीरे धीरे अपने इंटेंसिटी को बढ़ाएं. So it is an advisable thing, depending upon उनका कंडीशन कैसा है, she can slowly start back.
1: तो यहाँ पे परिवार का योगदान भी बहुत जरूरी है.
0: बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हेल्दी जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें ब्रेस्ट फीडिंग करना जरूरी है बच्चे को. लेकिन सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ और सिर्फ माँ से नहीं होता है. माँ तो जरूर ब्रेस्ट फीडिंग कराती कराती है, लेकिन माँ को सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड कराने में फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है.
1: अच्छा.
0: तो अगर माँ रिलैक्स रहती है, माँ को फैमिली सपोर्ट मिलता है, जब भी बच्चा रेस्ट करता है तो हस्बैंड या ग्रैंड पेरेंट्स या सिबलिंग जो है बच्चे का देखभाल उस टाइम करते हैं. बच्चे का डायपर चेंज करो, क्लोथिंग चेंज करो, बच्चे को बर्पिंग करो, बच्चे को थोड़ा सुला दो ताकि माँ रेस्ट कर सकें, राइट. और साथ ही साथ बच्चे को तो माँ ब्रेस्ट फीड कर रही है, माँ का भी आहार का ध्यान रखो. माँ को हेल्दी बैलेंस्ड डाइट खिलाओ, माँ को न्यूट्रिशियस फूड दीजिएगा, टेक केयर ऑफ हर रेस्ट. तो उससे क्या है, फुल फैमिली के सपोर्ट से माँ सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड कर पाती है, एक हेल्दी बेबी को आगे लेके जा सकती है. तो फैमिली डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि फैमिली माँ को डिस्करेज ना करे कि नहीं आपको दूध नहीं आ रहा है, आपको दूध नहीं आ रहा है, चलो बॉटल फीड करा है, चलो आर्टिफिशियल. अगर हम लोग ही माँ को नेगेटिवली डिस्करेज करेंगे देन वेयर विल शी गो टू.
1: Yes.
0: तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली हमेशा उनको पॉजिटिव बोले और उनको सपोर्ट करे. तो जरूर हर माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है. बहुत जरूरी है.
1: अब आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी माताएं बहनें ये कार्यक्रम सुन रही हैं, उनको आप ये स्तनपान सप्ताह पे क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: जरूर. तो सबसे पहले तो ये अगस्त 1 तारीख से अगस्त 7 तारीख तक हम लोग विश्व स्तनपान सप्ताह बना रहे हैं, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक. तो इसके दौरान ना मैं हर स्तनपान कराने वाली माताओं को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो समर्पण और प्यार का भाव आप दिखा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, यही बच्चे जो हैं आगे जाके एक तंदुरुस्त सिटीजन बन के हमें एक हेल्दी फ्यूचर देंगे. तो जो आप कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, इसे आप आगे बढ़ाते रहिएगा. अपने ऊपर विश्वास रखिएगा कि आप अपने बच्चे को अपना दूध ही देगी, कि आप अच्छे से स्तनपान करा सकती है और आपका दूध आपके बच्चे के लिए काफ़ी है. और इस दौरान आप अकेली बिल्कुल नहीं हैं, आपके साथ हम सब खड़े हैं. अभी हमारे अस्पताल ही सारे हॉस्पिटल्स और सारे हमारे इंस्टीट्यूट जो हैं हमारे आशाओं को ट्रेन करते हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस के ऊपर. और इसके चलते जो है हमारी आशा वर्कर्स जो है फॉर द फर्स्ट 42 डेज 42 दिन तक हर डिलीवरी के बाद में मदर के घर पे जाके लैक्टेशन ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग होता है नहीं होता है असेस करके उनको हेल्प करती है. और अभी ये ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के दौरान भी हमारे DHS के स्टाफ, हमारे आशा वर्कर्स जो है डेली हर स्तनपान कराने वाले माँ के घर में जाके उनका हेल्प करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है. तो उनको हर कदम हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं. मैं एट दी एंड यही बोलना चाहूँगी हर माँ को कि प्लीज़ स्तनपान कराते समय आप अपना ज़रूर पहले ख्याल रखें, अपना आराम अच्छे से लें, अपना अच्छे से पौष्टिक आहार लें और फिर हम अपने बच्चे को हर 2 से 2.5 घंटे में दूध पिलाएं. और आप इस दौरान आप कभी अकेली नहीं हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए हम सब यहाँ पे हैं, इंक्लूडिंग आपके फैमिली मेंबर्स, जिनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी माँ को अकेला ना छोड़े, उनको आराम दिलाए, उनका ख्याल रखे, उन्हें हमेशा एनकरेज करें कि उनका ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी है. तो ज़रूर माँ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग कर सकेगी. और हम लुक फॉरवर्ड ये करते हैं कि कल हम एक ऐसा समाज बना सकेंगे जहाँ हमारी हर माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराते हुए गर्व महसूस कर सके.
1: बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छा मैसेज आपने महिलाओं के लिए दिया है. तो डॉक्टर विनीता शाजू जी, आपने अपना

0: कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी बातें हमें स्तनपान सप्ताह के लिए बताई, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
1: थैंक यू रीमा जी।
2: बहनों, हमें आशा है कि डॉक्टर विनीता शाजू से हुई हमारी भेंट वार्ता ने आपको ज़रूर ज्ञान्वित किया होगा। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, हथकरघा यानी कि हैंडलूम वो कला है जिसमें बुनकार कपड़े को शटल और पैडल के उपयोग से बिना बिजली के प्रयोग किए बुनता है। यह हमारे देश की एक पारंपरिक कला है जो आज भी कई ग्रामीण वासियों के लिए उनकी आजीविका का साधन बनी हुई है, और इसी कला को जीवंत रखने के लिए हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। बहनों, 1905 में इसी दिन अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन में लोगों ने देशी कपड़ों को छोड़ देश में बनने वाले यानी कि खादी और हथकरघा को अपनाया था, और इसी इतिहास को याद करते हुए हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन सभी बुनकारों को सम्मान देता है जो अपनी कला से आज भी इस तरीके को जीवित रखे हुए हैं। साथ ही में हथकरघा काम से जुड़े लोगों की आय और जीवन स्तर को सुधारना भी इस दिन को मनाने का उद्देश्य है, और इसका उद्देश्य है वोकल फॉर लोकल की सोच के तहत देश के कलाकारों के हाथ से बने कपड़ों को विश्व विख्यात स्थान देना। तो चलिए इस कला को सम्मानित करें और हथकरघा दिवस को मनाते हुए अपने घर में अपने कपड़ों में हैंडलूम को शुमार करें। तो बहनों, इसी के साथ हमारा आज का घर संसार का अंक यहीं समाप्त होता है। तो आप अपनी सखी अपनी दोस्त रीमा अरोड़ा को आज के अंक से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Good afternoon. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. U.S. President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally, including 13 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
1: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
0: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
0: मिस्टर मोदी सेड ड्रग एडिक्शन डाइवर्ट्स पीपल फ्रॉम देयर गोल्स एंड डिस्टेंसेस देम फ्रॉम अचीविंग देयर ड्रीम्स। ही सेड दैट एडिक्शन नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज फैमिलीज बट ऑल्सो वीकेंस द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन। Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life, and destroy the future of individuals.
1: Nasha केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।

0: meters, while Shubham Joyal took silver. On the track, Gulveer Singh became the first Indian to win a Commonwealth Games 5,000 meter medal by claiming bronze, supplementing his earlier silver in the 10,000 meters. Komudi Parikh for Akashvani News.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continued to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with fourth place in medal tally. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Munish Sharma. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
2: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे

0: सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थरात, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए गए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

0: गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत सात शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और NCC के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती

0: पुतली पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगा हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मछुआरों को 4 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओ, इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपके लिए है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म दोस्ताना से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी व किशोर कुमार की। आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

उदित नारायण व सोनू निगम की आवाज़ों में ये गीत है फिल्म दोस्ती से। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

गीत लहरी कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए नितिन मुकेश व मोहम्मद अजीज की आवाजों में फिल्म खुदगर्ज का गीत। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

जावेद अख्तर का लिखा तथा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों से सजा ये गीत है श्रोताओं फिल्म नरसिम्हा से। युगल आवाजें हैं उदित नारायण व अलका याग्निक की।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत लहरी का समय अब यहीं पर समाप्त हुआ।
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

ये है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। 3 बजे हैं, अब समय है कार्यक्रम एल्बम टाइम का। तो श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम का पहला एल्बम सॉन्ग दिलेर मेहंदी की आवाज़ में सुनते हैं।

तो मोहब्बत करेगा कौन। इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन।

अशकों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं। निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का।

0: श्रोताओं, इसी के साथ एल्बम टाइम कार्यक्रम का समय अब यहीं पर समाप्त हुआ।
1: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हमसफर।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। श्रोताओं, इस समय 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

आज के यूं ही गाते रहो कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए सोनिया का नमस्कार। श्रोताओं, आंखें प्रकृति का दिया हुआ वो अनमोल उपहार है जिनसे हम दुनिया की खूबसूरती महसूस करते हैं। जरा सोचिए, अगर आंखें न होती तो हम प्रकृति के हर रंग का आनंद कैसे ले पाते। इसीलिए इनकी रोशनी को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है।

श्रोताओं, आँखों में कभी सपने होते हैं तो कभी अपनों के लिए प्यार और कभी आंसू। आँखें सिर्फ देखती नहीं, भावनाओं को भी बयां करती है।

जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।

श्रोताओं, आंखें आपके जीवन की सबसे खूबसूरत तस्वीरें आपके लिए सहेजती है। इन अनमोल आंखों की देखभाल आज ही से शुरू कीजिए। इसी सुविचार के साथ आज के इस कार्यक्रम से अब चाहते हैं इजाजत। नमस्कार।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

0: निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को स्पर्श किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
2: ओके,
1: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन, थोड़ी सी बुरी बात
2: फिर है। मायूस किस्सा है, बताती हूँ
1: जी,
2: बताती हूँ। ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं टेडी जिंदगी छोड़कर मैं एक स्ट्रगलर के रूप में बंबई में हाजिर हो गई।
1: हाँ,
2: फिल्म, क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बंबई, तो बंबई आना लाजमी था, तो बंबई पहुंच गई। और इत्तफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला, वहाँ दामू जवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वाज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुलकर ने किया मराठी अनुवाद। तो एनीवे वो मैं कर रही थी, लेकिन उसके पहले बम्बई पहुँचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया।
1: वाह।
2: और ओमपुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी डेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था, और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बम्बई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंसवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था, कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनी वे मैंने कहा कि बम्बई में ये करते हैं, और NCPA के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज से खाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया
1: जी।
2: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने
3: कप्तन ही तंगम हानांगन लोन इन यगन तह हे मिनलेरन इंड्री हियलगी अगस अनगम इन नोल न तह के करन रे तक ही अन अफे के ये फूल रे तमरोवत ते ही अफे के ये फूल रे इन हे थैंक यू ngro ai incha ingi sakam miho in indre hamul den ye phol re he el nu pre takhi ramalun miho indre ave en nangcha tanup khaning en elun re रन गम इन्नोल नंगरे तक ही हवत इहुल रे पंडरे तक ही ऐ हकप गम रिनाते लोन इन हांगेन लोन मिनलेरन हे क्रे तक ही हयगेन हा र अन इंद्रे निसा काम नंगरे तक ही हवत इहुल रे पोयनरे तक ही राते लोन रे इन हा होलरन हा हे अनुप कानिंगेन उ इंद्रे ऐ मिचुरन तहा अंगवन के सकाम रे तक ही हिंगोंग एलोन चहकेन हे एलो प्रे तक इनवा हे कानिंगेन अंगवन ये रोंगे सकाम तंगमु हैप्पी फ्रेंडशिप डे इन ये रॉकर है। हो ये तो हंगे तरह तने तहले लगा तह तिन कक दिगत्यवे होल ही कॉयर्स अलगम सेंट थॉमस कैथेड्रल इहान्योज़।

0: कुछ गलंग इंधाई दलो अंश आई हांग मैंने तहलील लंग तह तीन कर का हलील में हो ली कोयर्स अलगम सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च इहान्योज होयंग तल गांग इन सिंग तंगमु हेक इन हरिच आई हांग रोंग इत का सात इत फैन करो तला हराफ गायन।
1: श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की दूसरी कड़ी।

Hello, dear friends. Welcome to Lamhe Program with me, your RJ Chetan. अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए जीवन शैली में मामूली बदलाव करने से बहुत लाभ मिल सकता है। जाने जीवन शैली बदलाव चेतन से इस लम्हे प्रोग्राम में। वर्तमान समय में बहुत से लोग अनिद्रा, रात में नींद न आना, बार बार आंख खुलना, नींद के दौरान बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अच्छी नींद आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रात में ठीक से सो नहीं पाते या नींद पूरी नहीं होती, तो इससे न सिर्फ पूरे दिन थका हुआ महसूस करते, बल्कि इससे कई स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम भी बढ़ता है। एक अच्छी और पर्याप्त नींद आपको तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करवाती है। खराब नींद के लिए आपकी जीवन शैली की कई गलत आदतें जिम्मेदार हो सकती है, जो आपको भरपूर और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लाने से रोकती है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि के सामने अधिक समय बिताना, एक्सरसाइज न करना, संतुलित आहार न लेना और रात को देर से सोना खराब नींद के कुछ आम कारण हैं। अब सवाल यह है कि नींद की गुणवत्ता से सुधार करने और अनिद्रा, खराब और बेचैन जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं जीवन शैली में बदलाव और कुछ अच्छी आदतों को दैनिक रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जीवन शैली बदलाव। सुबह कुछ समय धूप में बिताए। अच्छी नींद के लिए कोशिश करें कि अपने दिन की शुरुआत कुछ समय धूप में बिताकर करें। ऐसे करने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ावा देने में मदद मिलती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। पैरों को मालिश करें। अगर रात को सोने से 30 मिनट पहले आप घी गर्म करके इससे पैरों और तलवों की मालिश करते हैं, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। डिनर में प्रोटीन रिच फूड्स खाएं। ये नींद की गुणवत्ता में सुधार और अच्छी नींद को बढ़ावा देती है, साथ ही हार्मोन्स को संतुलित रखती है। सुबह के समय रात भर पानी में भीगे हुए 4 से 5 बादाम जरूर खाएं, क्योंकि इनमें जिंक, मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं जो नींद को बढ़ावा देते हैं। आप शाम को स्नैक्स के तौर पर शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। यह शरीर में मेलेटोनिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है और एनर्जी बढ़ाता है। आप सुबह भीगे या सूखे अंजीर का सेवन कर सकते हैं, तो ये अच्छी नींद को बढ़ावा देते हैं और हार्मोन्स को संतुलन में रखते हैं। शाम के बाद चाय या कॉफ़ी न पिए। इनमें कैफीन होता है, जो आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और बेचैन नींद का कारण बनता है। नियमित एक्सरसाइज करने से रात में अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है, लेकिन रात में या सोने से पहले एक्सरसाइज करने से बचें। यह शरीर को शांत और स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपको रात को सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन का पाचन और चयापचय आसानी से हो जाता है। डिनर के बाद कैमोमाइल टी पिए। इससे नींद को बढ़ावा देने में और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। तनाव और चिंता की भावना कम होती है, मन शांत रहता है और नींद अच्छी आती है। जीवन शैली में इन सरल बदलाव के साथ आप अनिद्रा या नींद न आने की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए अगर अच्छी नींद चाहते हैं, तो इन्हें रूटीन का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करने के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। जब स्वास्थ्य की बात आती है, तो नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लेना। नींद हमारे मन और शरीर के उपचार के साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ की माने तो नींद सबसे अच्छा मेडिटेशन है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक बेहतर और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार कैसे कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर और अच्छी नींद ले सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक कहते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम रोजाना ऐसे कई काम करते हैं जो हमारी नींद में खलल का कारण बनते हैं, और बेहतर नींद के लिए आपको इनसे बचने की ज़रूरत है। नींद शक्तिशाली है, जादुई है, उपचारात्मक है और डिटॉक्सिफाइंग है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस सब के अलावा भी नींद के बहुत लाभ है, लेकिन सिर्फ तभी

0: जब आप एक गहरी और पर्याप्त नींद लेते हैं। परेशान, हल्की और अनुचित नींद आपके उपचार में देरी का कारण बन सकती है। यह आपको फोकस और आपकी कार्यक्षमता को कम कर सकती है। सिर्फ उतना ही नहीं, नींद की कमी आपके पाचन में गड़बड़ कर सकती है, जिससे आप ज़्यादा चिंतित महसूस कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको कम आराम का अनुभव हो सकता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी नींद का ध्यान रखें, क्योंकि ये निश्चित रूप से हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स की मानो तो नींद में खलल का कारण कई बार हमारी खुद की गलतियां होती है, जिसे हम पहचान नहीं पाते और धीरे धीरे वह आदत बन जाती है और यह आदत एक दिन बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी आदतों को बदलें और खुद को सेहतमंद बनाने की ओर एक कदम उठाएं। यहाँ हम आपको एक्सपर्ट्स द्वारा बताए कुछ उन खराब आदतों के बारे में बता रहे हैं जिसे हम जाने अनजाने जरूर करते हैं। इन बातों को जानने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप इसमें सुधार कर और अच्छी नींद पाने की कोशिश करेंगे। कैफीन का सेवन सीमित करें। कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और जो लोग इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, यह उन्हें नुकसान ही पहुंचाती है। ये बात सही है कि कॉफ़ीन मूड को बेहतर करती है, मगर अत्यधिक मात्रा हानिकारक भी है। दोपहर के बाद कॉफ़ी आपके नींद में खलल डाल सकती है। इसीलिए यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी के आदी हैं, तो आपको अपने कॉफ़ी और चाय के सेवन को सीमित करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज हमेशा सुबह के समय करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। हालांकि हल्के व्यायाम आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन हैवी वर्कआउट करना सही नहीं है। दरअसल शाम का समय हमारे लिए आराम करने के लिए है। शाम के समय भारी व्यायाम से अनिद्रा और नींद की अन्य समस्याएं हो सकती है, क्योंकि व्यायाम हमें जागरूक और ऊर्जावान महसूस कराता है। अधिक ऊर्जा शारीरिक और मानसिक रूप से हमें अधिक सक्रिय बनाती है, जिससे हमारे मस्तिष्क को सोते समय बंद करना मुश्किल हो जाता है। भोजन हमेशा समय से करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने का भी एक समय निर्धारित होता है। जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनुसार हमारा शरीर नहीं करता है, इसे आप बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से सुबह ब्रेकफास्ट और लंच टाइम से करना चाहिए, उसी तरह डिनर भी समय पर करना चाहिए, क्योंकि इस पर हमारी नींद की क्वालिटी निर्भर करती है। सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन अग्नि तेज नहीं होती, इसीलिए रात के खाने के लिए कुछ हल्की और सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के एक दो घंटे के भीतर भोजन करना सबसे अच्छा है। आजकल लोग सोने जाने से पहले ज़्यादा समय अपने फ़ोन पर बिताते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है। इससे न सिर्फ हमारी नींद खराब होती है, बल्कि पूरा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए सोने से एक घंटे पहले गैजेट्स का इस्तेमाल से बचना सबसे अच्छा है। जो पूरे दिन लगातार काम करने के बाद आपके दिमाग को आराम करने में मदद करता है, ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरेगी। सुबह की धूप हमें विटामिन डी देता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, साथ ही नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। सुबह या शाम के समय थोड़ी धूप लेना आपको सोते समय बेहतर नींद लेने में मदद करता है। यह आपके शरीर के दैनिक सिर्काडियम रिदम को सेट करने में आपकी मदद करके ऐसा करता है। तो ऐसे में धूप में थोड़ा समय ज़रूर बिताए। वेल डियर फ्रेंड्स, I have given all information to improve the quality of your sleep. Please follow a routine and exclude bad habits. With this wonderful information, this is your RJ Chetan signing off. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की दूसरी कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30, जिसमें सूचनाओं के अलावा आप फिल्मी गीत भी सुन सकते हैं। शाम 6 बजे सुनिए व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगिनी। 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम धरती के गीत का, जिसमें आज हम आपको भोजपुरी लोकगीत सुनाएंगे। 6:45 पर सुनिए देशगान। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाओं से अवगत कराया जाएगा शाम 7:15 पर। संध्या 7:20 पर आप सुन सकते हैं दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम के तहत फिल्मी गीत। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30, जिसमें आप लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो

नेट, जिसमें सूचनाओं के अलावा आप फिल्मी गीत भी सुन सकते हैं। शाम 6 बजे सुनिए व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगिनी। 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम धरती के गीत का, जिसमें आज हम आपको भोजपुरी लोकगीत सुनाएंगे। 6:45 पर सुनिए देशगान। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। मौसम की जानकारी, जलियांवाला यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाओं से अवगत कराया जाएगा शाम 7:15 पर। संध्या 7:20 पर आप सुन सकते हैं दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम के तहत फिल्मी गीत। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30, जिसमें आप लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स का आनंद ले सकते हैं। रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सुधाकर देवले का गायन ख्याल आप सुन सकते हैं, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत भी सुन सकते हैं, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। रात 11 बजे मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

अब सुनते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। 5:55 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एग्री टिप्स, जिसमें कल जानकारी का विषय रहेगा गन्ने की फसल सुरक्षा। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा वादा शीर्षक पर। रामचरितमानस गान की 319वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। 6:40 पर समाचार वार्ता। 6:45 पर वतन के गीत। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।

7:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी। इसी समय FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का आनंद भी आप ले सकते हैं, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। 7:30 पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग अंडमान, जो मीडियम वेव और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज दोनों पर प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 8:30 पर आप सुन पाएंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह का गायन। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने कल सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में होगा प्रेमा हरिहरन का गायन, गीत गाता चल। फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 10:00। 11:00 NCERT की 1341वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। किशोर कुमार के गाए गीत सुनिए कल दिन में 11:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार में। 12:00 तेलुगु कार्यक्रम। 12:30 का समय रहेगा मलयालम कार्यक्रम का। 1:10 पर सुनिए समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाए। आपके नाम फिल्मी पैगाम व्हाट्सएप पर आधारित इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए कल 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड के संग। 3:30 पर बोलते नगमों का कार्यक्रम होगा, यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत, जिसमें कल फनकार होंगे हेमा सरदेसा।

कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुन सकते हैं 4:45 पर। श्रोताओं, ये थे कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म से। आवाज़ें आशा भोसले और अलका याग्निक और उदित नारायण की, गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत राहुल शर्मा का।

अगली पेशकश आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में समीर की लिखी रचना, संगीत नदीम श्रवण का। इस गीत को हमने लिया है प्यार का साया फिल्म से।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश जो हमने ली है युवराज फिल्म से। गीत रचना गुलजार की और संगीत A.R. रहमान का, आवाजें बनी देओल और श्रेया घोषाल की।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे है। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानडी वणगम तमिल अमुदम वणकम नेयर्गले।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे है। श्रोताओं, अब समय है व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम संगीत संगिनी का।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है जंगली घाट से वंदना पांडे की फरमाइश पर। करण अर्जुन फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का है और इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं महिलाओं की फरमाइशों को। तो सखियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने पसंद के गीत सुनने के लिए आप हमें व्हाट्सएप संदेश जरूर भेजिए। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर है 9474234000। सखियों, संदेश भेजते समय अपना नाम और पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल जरूर लिखें। हर रविवार इसी समय यानी संध्या 6 बजे हम आपकी फरमाइशों को संजोकर पेश करेंगे आपका अपना कार्यक्रम संगीत संगनी। अब सुनते हैं क्योंकि फिल्म का शीर्षक गीत। इस गीत की फरमाइश की है रचना तिर्की ने प्रेमनगर से।

अगली फरमाइश अलका याग्निक और शंकर महादेवन की आवाज़ में घातक फिल्म के इस गीत की। फरमाइश करने वाली है कैंबल बे से सरबजीत कौर।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्निकोबार से जोसी बेथ की फरमाइश पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत, स्वर दिया लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, अभी आप स्वराज दीप से संध्या हल्दार की फरमाइश पर जुदाई फिल्म का गीत सुन रहे थे। इसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगनी सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। तो श्रोताओं, आनंद लीजिए भोजपुरी लोकगीतों का।

श्रोताओं, अभी आप धरती के गीत कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए। अब सुनते हैं देशगान।

श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दूं, आज संध्या 7:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी, इस कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:30, जिसमें आप लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स का आनंद ले सकते हैं। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

कल सुबह 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा वादा शीर्षक पर।

कल सुबह 7:15 पर आपके लिए पेश किया जाएगा फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाली है। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: RBI कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
8: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से द्वीप समूह में गर्भवती महिलाओं को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं जी जयश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प

0: लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले छिपाए नहीं। श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रमंडल खेल। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से द्वीप समूह में गर्भवती महिलाओं एवं बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य निदेशालय के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के तहत कुल 3,914 लाभार्थियों ने लाभ प्राप्त किया। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2011 को गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के माता पिता पर प्रसव एवं उपचार के दौरान होने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन सहित पूरी तरह निःशुल्क एवं कैशलेस सेवाएं प्रदान की जाती हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षित प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है। विभाग ने गर्भवती महिलाओं से कहा है कि वे सुरक्षित मातृत्व एवं नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध इस निशुल्क सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं। ब्लॉक परियोजना कार्यालय लिटिल अंडमान द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान और मूल्यांकन शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र श्री विजयपुरम और समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। 4 अगस्त को पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आरकेपुर, जबकि 5 अगस्त को राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हटबे में शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जाएगी और उन्हें निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही अभिभावकों को चिकित्सा सुविधाओं, सहायक उपकरणों, UDID पंजीकरण और पुनर्वास सेवाओं की जानकारी भी दी जाएगी। स्वामी चिन्मयानंद जी की महासमाधि दिवस का आयोजन कल चिन्मय मिशन के सभागार में किया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 3:30 बजे गीता पाठ के साथ शुरू होगी, जिसके बाद शाम 5:30 बजे

अभिषेक होगा। रात 8 बजे प्रसाद वितरण किया जाएगा। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर ट्रायल टाइम स्पर्धा में रोनाल्डो लैंतोजाम हिस्सा लेंगे। मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा। महिला वर्ग में जस्मीन लेबोरिया, प्रीति पवार, प्रिया गंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंगाल ने स्वर्ण जीता। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य के साथ कुल 39 पदक के साथ चौथे स्थान पर है। चेन्नई मुख्यालय द्वारा दक्षिण भर्ती क्षेत्र के अधीन भारतीय सेना की ओर से चलाए जा रहे अभियान दिल्ली टू द्वीप 2.0 के तहत द्वीप समूह में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार इस रैली में भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों से प्रवेश पत्र www.joinindianarmy.nic.in से डाउनलोड करने को कहा गया है। यह भर्ती रैली 23 से 26 अगस्त तक नेताजी स्टेडियम में होगी। एमवी स्वराजद्वीप कल सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से कोलकाता के लिए रवाना होगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य कल सुबह 5 बजे से 7 बजे तक चलेगा। जहाज हेडोजट्टी से छूटेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से द्वीप समूह में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: क्या नाम?
1: गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: Oh, lovely. Well done.
4: Business loan approved.
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
6: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
5: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
6: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
7: RBI कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
9: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
10: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:16 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं एक आवश्यक सूचना, मौसम की जानकारी और जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना।

श्रोताओं, क्या आपके ज़िले में कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतियोगियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की है? अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया को से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। ये थी आवश्यक सूचना। अब सुनते हैं मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, पर मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तटों पर हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहने तथा जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है। इसलिए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वह 5 तारीख तक समुद्र में ना जाए। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी बम्बुका कल 3 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए रवाना होगा। कल ही दिन में 12 बजे यह जलयान रंगत से छूटेगा और इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। श्री विजयपुरम से स्वराजदीप जाने के लिए जलयान एमवी हडबे कल सवेरे 6:15 पर रवाना होगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। एमवी बाराटांग श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए कल सुबह यानी 3 तारीख को सवेरे 6:15 पर छूटेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम आएगा। कल दिन में 11 बजे एमवी स्ट्रेट आइलैंड श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा और दिन में 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजदीप जाएगा। दोपहर 2:30 पर यह जलयान स्वराजदीप से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एम वी रानीचंगा कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराजदीप जाएगा। दोपहर 2 बजे स्वराजदीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए यह जलयान कल ही शाम 3:30 पर अपनी यात्रा आरंभ करेगा। एम वी रानी लक्ष्मी कल दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापसी करेगा। एम वी जॉली बॉय कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराजदीप के लिए रवाना होगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 4 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराजदीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। श्रोताओं, ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप आवश्यक सूचना, मौसम की जानकारी और जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।
1: गुमसुम गुमसुम।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है बॉम्बे फिल्म से। आवाज़ चित्रा की है, संगीत AR रहमान का और लिरिक्स महबूब का।

श्रोताओं, अब सुनते हैं अगला और अंतिम गीत इस कार्यक्रम का। आवाज शैलेंद्र सिंह की। इस फिल्म को हमने लिया है जमाने को दिखाना है से।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। आप सुनते हैं युवाणी। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दोस्ती केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। सच्चा मित्र वही होता है जो हमारी खुशियों में मुस्कुराए और कठिन समय में बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ निभाए। मित्रता विश्वास, सम्मान, अपनापन और समझ की मजबूत नींव पर टिकी होती है। फ्रेंडशिप डे हमें अपने उन दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है जिन्होंने हर मोड़ पर हमारा हौसला बढ़ाया है, जीवन को खूबसूरत बनाया है। आइए इस दिन यह संकल्प ले कि हम अपनी दोस्ती को हमेशा ईमानदारी, प्रेम और विश्वास से निभाएंगे, क्योंकि सच्चे दोस्त जीवन की सबसे कीमती दौलत होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूज़िक लवर्स में।

0: दोस्तों, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें इन नंबरों पर 2325 40 और 2325 58, और हमारा एसटीडी कोड है 03192। तो चलिए दोस्तों, अब लेते हैं अपना पहला कॉल। हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: हेलो म्यूजिक लवर्स।
0: हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम?
1: नमस्ते सर, मैं प्रेमजीत चक्रवर्ती बोल रहा हूँ सर।
0: जी प्रेमजीत जी, प्रेमजीत जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा है सर, आप कैसे हैं सर?
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बताइए, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो सर अभी रोजाना बारिश हो रहा है हमारा आसाम में। आसाम में तो अभी फ्लड चल रहा है सर।
0: जी जी हाँ
1: फ्लड चल रहा है
0: जी, तो अभी हम यही आपसे कहेंगे कि आप किसी सुरक्षित जगह पे रहें।
1: हेलो,
0: हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो
1: आवाज़ आ रहा है, क्लियर नहीं सुन रहा सर, नेटवर्क के कारण।
0: जी, तो बता दीजिए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज आज सर मैं गाना सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है सागर।
0: जी, और गाने के बोल?
1: गाने का बोल कुमार जी की आवाज में, सागर जैसी आपको।
0: जी ठीक है प्रेमजीत जी, अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: हेलो म्यूजिक लवर्स सर जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आपका नाम?
1: गिराम, हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: जी भगवान सिंह जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी, और आज मित्रता दिवस है, फ्रेंडशिप डे है सर जी, तो मैं आप सभी श्रोताओं को और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ सर जी।
0: जी मैं हमारी ओर से भी आपको मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और आपके कार्यक्रम के रेडियो के माध्यम से मुझे पूरे भारत से बहुत सारे दोस्त मिले हैं सर जी, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं।
0: जी तो बताइए आपका काम वाम कैसा चल रहा है?
1: काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर जी, फसल भी एक नंबर है और बरसात बहुत हल्की हो रही है,
0: जी
1: बाकी मौसम बहुत सुहाना है हमारे इधर सर जी।
0: जी तो बताइए इस सुहाने मौसम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: सर मैं अपने दोस्तों के लिए एक गीत सुनना चाहता हूँ, गाने के बोल है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, फिल्म का नाम है शोले, और मेरे साथ सुनने वाले कुछ दोस्त हैं सर, उनका नाम ले सकते हैं?
0: जी
1: पूर्णिमा दीदी है विजयपुरम से, तनुश्री बिटिया है, गजराज लोधी जी, केसर सिंह राजपूत जी, राम बाबू शर्मा जी, रमेश प्रजापति जी है, मांगीलाल चंदेल जी, राकेश शिमला से हैं, बहन संगीता देवना जी, अशोक देवना जी, अविनाश तेली जी, पूरन वर्मा जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर, आपको डेलीकेट रहेगा।
0: ठीक है भगवान जी, अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार, आपका नाम?
1: मैं आशुतोष जगन्नाथ त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
0: जी आशुतोष जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: अच्छा हो, और फोन लगने से और भी अच्छा हो जाता हूँ।
0: जी तो आप बताइए, आप काम क्या करते हैं?
1: मेरा दुकान है इलेक्ट्रॉनिक का। आज तो संडे है, आज तो छुट्टी है घर में।
0: जी
1: हेलो म्यूजिक लवर का मजा ले रहे हैं।
0: जी जी तो छुट्टी पे अमूमन आप क्या करते हैं जब घर में रहते हैं?
1: घर में रहता हूँ तो घर का भी छोटा मोटा काम कर लेता हूँ।
0: जी जी तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: और सर जी, गाना बोलने का पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ।
0: जी
1: हमारा आकाशवाणी का नियमित श्रोता महाराष्ट्र है, गंगाधर जी का आज जन्म तिथि है, तो
0: जी
1: आकाशवाणी का माध्यम से उनके जन्म दिवस का ढेर सारी बधाई। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन में सुख शांति से भर जाए। ईश्वर जी,
0: जी
1: साथ में आप सुनना चाहता हूँ किशोर दा और रफी साहब का एक मशहूर गाना, फिल्म का नाम है दोस्ताना, और गाने का बोल बने चाहे दुश्मन। इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी जी ने और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी ने चित्र।
0: जी तो ठीक है, अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: हेलो म्यूजिक लवर, सरदीप को राधे राधे।
0: जी राधे राधे, आपका नाम?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: जी केसरी जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: हेलो।
0: हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो
1: हाँ आ रही आ रही सर।
0: जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया सर, और आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका फिर काम सब कैसा चल रहा है?
1: काम बढ़िया चल रहा सर, बस बारिश हो रही रिम झिम रिम झिम।
0: जी, तो बारिश के मौसम में आपको अच्छा लगता है?
1: हेलो
0: हेलो जी, आवाज़ आ रही है? हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हेलो जी, आवाज़ आ रही है? हेलो
1: हाँ सर, आवाज़ बीच बीच में ब्रेक हो होकर आ रही है, क्या बात है?
0: जी, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा
1: अच्छा,
0: जी। तो आपके वहाँ काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है इस बार की?
1: नहीं सर अच्छी तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ अभी फसल के लिए तो बढ़िया है, लेकिन आने वाली फसल के लिए जो वाटर लेवल रहता है वो जरा कम है सर। अब होएगी लेकिन बारिश तो सर।
0: जी, तो अभी कौन कौन सी फसल बोई है आपने?
1: अभी तो सर सोयाबीन और धान की फसल लगाई है।
0: जी, तो फसल अच्छी हो रही है?
1: हाँ अभी फसल तो बढ़िया है सर।
0: जी, आशा करते हैं कि आपकी फसल बहुत ही अच्छी हो इस बार। हेलो हेलो
1: आज आज सर मित्रता दिवस है, तो इसी उपलक्ष में गाना रहेगा धर्मवीर मूवी से, सात अजूबे इस दुनिया में आठ भी अपनी जोड़ी, और हमारे मित्र गंगाधर सावनकर जी का जन्मदिन भी है, तो
0: जी
1: उनको भी बधाइयाँ, और हमारे मित्रों को सुनने वाले आप सुनेंगे राम बाबू शर्मा जी, गजराज लोधी जी, मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, हेलो फरमाइश रेडियो एकता ग्रुप, तारू नूर अंसारी जी और सुनील झा जी भी सुन रहे हैं।
0: जी केसरी जी, हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मंच।

रविवार भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें इन नंबरों पर 2325 40 और 2325 48, और हमारा सिटी कोड है 03192। तो चलिए दोस्तों, अब दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, अब समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनते हैं शोले फिल्म का गीत। आवाजें किशोर कुमार और मन्ना डे की है। गीत रचना अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने की। संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार मजरू सुल्तानपुरी की लिखी रचना। स्वर दिया मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म है दोस्ती।

श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश जो हमने ली है नाच गोविंदा नाच फिल्म से। आवाजें कुमार सानू और साथियों की है, गीत रचना अनजान की और संगीत दिया है अमर उत्पल ने।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। श्रोताओं, क्या आपके जिले में कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतियोगियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपये तक पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने जाए। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। श्रोताओं, अब सुनते हैं रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत। सबसे पहले रोजगार समाचार।

अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीद अभ्यर्थियों से

आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में MIS डेटा एनालिस्ट का एक पद, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के दो पद, अकाउंटेंट का एक पद तथा HMIS असिस्टेंट के 6 पद शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को MIS डेटा ऑनलाइन पद के लिए 40,000 प्रतिमाह, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एवं अकाउंटेंट पद के लिए 30,000 रुपये प्रतिमाह तथा HMIS असिस्टेंट पद के लिए 20,000 प्रतिमाह का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए BE BTEC या SCA या MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अथवा समकक्ष योग्यताओं के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव आवश्यक है। MPH मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ अथवा समकक्ष योग्यता भी मान्य है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, संबंधित तकनीकी योग्यता तथा DIAA+ MCSA क्षेत्र का अनुभव अपेक्षित है। अकाउंटेंट पद के लिए MCOM डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान या BCOM डिग्री के साथ लेखा एवं वित्त क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। HMIS असिस्टेंट पद के लिए BCA कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री तथा संबंधित अनुभव आवश्यक है। सभी पदों के लिए आयु सीमा 21 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन शैक्षणिक योग्यता अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है। साक्षात्कार संबंधी जानकारी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 22 जुलाई का द डेली टेलीग्राम भी देखा जा सकता है। ये थे रोजगार समाचार।

श्रोताओं, अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा, समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।

0: का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आवाम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जनभागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री

0: रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
2: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है।

0: इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
1: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो एरिना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी बांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi river recedes. Rainfall intensity decreases in Kerala, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
3: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा इस

साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत के ख्वाब को पहली बार एक धुन मिली।

0: 11 सितंबर 1942 पहली बार जनगण मन के बुलंद स्वर यूरोप के ब्रास बैंड और स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में ढल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिम्फनी थी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Sugato Bose, अध्यक्ष नेताजी रिसर्च ब्यूरो।
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration. It was beautifully played. And Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg, and behind him, we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.
0: इसके कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद खुफिया और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा और फिर 1943 की शुरुआत में नेताजी का सिंगापुर पहुंचना। यहीं उन्होंने राज बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली।

0: उस समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्वी एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्वी एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और सरानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था

0: इस गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943 आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को सवारा और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी तराने का।

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत

0: मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो एक पंक्तियां आती हैं वो भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
1: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना, वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी का जंग लड़ा।
1: सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना कदम कदम बढ़ाए जा।

0: आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: सिंपल लिरिक्स टैपिंग इनटू कोर इमोशंस ऑफ करेज, यूनिटी एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड फुट टैपिंग बीट्स।
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से हैं।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती हैं, ये धुने प्ले होती हैं, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता। बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप करते हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। जो सेंटिमेंट्स ये धुने और गाने कन्वे करते हैं, शब्द उनके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं।
0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।
2: 1996 में जनरल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया। ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था, 1942 में। क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
0: मेजर नजीर हुसैन, भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
2: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया था, ये सिंपल एंड कॉमन म्यूजिक के हिसाब से बनाया गया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन कंपोजर हो, इसको 3 टुकड़ों में बनाया जाता है। एक तो इंट्रोडक्शन, देन मेलोडी, देन ब्रास 2T, दिस दैट वाज द फोर्स, जवान के कदमों के लिए फोर्स लाना, फिर अगेन मेलोडी, देन ट्रियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन HB बराल, हिम बहादुर बराल को दिया गया और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया। मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
0: सेना मुख्यालय में

0: अग्रणी संगीत सलाहकार रह चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
1: दिस इज फर्स्ट इज अ इंट्रोडक्शन। Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom kadam kadam badaye। This is melody, pehle jo tha introduction tha, now melody। Kadam kadam badaye ja, khushi ke geet gaaye ja, la la la la la la la la la la la la la la la la। This is melody, now is a brass beauty। La la la la la la la la pa pam pam pam pam pam pa pam pa pam tam taram taram tam pam pam pam da da। This is the brass duty, this is the josh jawan ke hriday mein lane ke liye, dimag mein lane ke। Then again is a melody।

0: This is the brass duty. This is the josh. This is the josh jawan ke hirday mein lane ke liye, dimag mein lane ke. Then again is the melody. This is also melody. Now is the trio. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा।
1: अब इस गीत के शब्दों और उसकी भावना पर रोशनी डाल रहे हैं कवि और वरिष्ठ प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
2: ये गीत लिखा कैप्टन राम सिंह जी ने और धुन भी उन्होंने ही बनाई है। हालांकि इसी मुखड़े का एक गीत बंशीधर शुक्ल जी का भी है। बंशीधर शुक्ल जी का जो गीत है उसके अंतरे बिल्कुल अलग हैं, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाए जा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए वो उसमें आपको मिलेगा। पहली ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अब जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बीहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहां रहे हैं, जंग करने के लिए मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से जाना है, एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म करना है। फिर एक जज्बा है कि दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, गुलामी को हटा देंगे, मिटा देंगे। तो एक एक पंक्ति में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जोश है, वो बिल्कुल अलग तरह का है, और जो एक मार्चिंग सॉन्ग के लिए जरूरी है वो सब कुछ इस गीत में है।

0: मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे।
1: जितने भी ये गीत हैं शिल्प के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से, बेशक उनमें कच्चापन है लेकिन जज्बात का सच्चापन है। बहुत जोश भरते हैं ये कविताएं, देश प्रेम से ओतप्रोत है एक एक पंक्ति है, और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, कम साधनों के साथ। जैसे एक गीत में आता है कि हम गोली खाकर झूमेंगे। अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। अब ये जो जज्बा है ये एक फौजी में और जो जन करने जा रहा है, वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं, किसी में भी जोश भरती हैं।
2: युद्ध समाप्त हुआ लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगतो बोस।
3: द ट्रायल बिगन ऑन द 5th ऑफ नवंबर एंड एंडेड ऑन द 31st ऑफ दिसंबर ऑफ 1945. And there was a huge popular upsurge across the whole country in support of Netaji's soldiers. And even if the British tried to, you know, ban INA songs, that was not very effective because in the public gatherings that were held, INA songs began to be performed. And then once Claude Auchinleck was forced to release the three INA officers, there was a slogan in those days, Lal Kile Se Aaye Awaaz, Saigal Dhilan Shanawaz. At that stage, you know, everywhere as part of the celebrations, and for example, on Netaji's birthday, on the 23rd of January of 1946, these INA songs were being performed everywhere.
2: कैप्टन राम सिंह की कंडक्टिंग बेटॉन ने हजारों दिलों की धड़कनों को एक ही लय में बांध दिया था। हिमाचल प्रदेश में जन्मे इस गोरखा सैनिक ने अपनी संगीत प्रतिभा से आजाद हिंद फौज के सांगीतिक संसार में नई जान फूंक दी।

ये वायलिन मुझको नेताजी ने अपने करकमलों से मुझे भेंट की और भेंट करते समय कहा था कि राम सिंह ये वायलिन भारतवर्ष में भी बजेगा।

0: हंसते हंसते जीना हो नेताजी।
1: मुमताज हुसैन के अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहाँ तक कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी शामिल थे। आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
2: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट कल्याणचंद हसर जी का लिखा हुआ है, इसकी धुन मैंने बनाई थी।

हमारे आजाद हिंद फौज के जवान जब दिन भर बहुत परिश्रम करते थे, शाम को जब भोजन करने अपने मेस में जाते थे तो खाना उना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कवाली गाया जाए।

0: नाम लिया। जय हिंद भयो, कहो जय हिंद।
1: नेहरू ब्रिगेड के कमांडर कर्नल ढिल्लन साहब ने नेताजी का फरमान कहकर एक गीत लिखा है, वो है नेताजी का फरमान, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़े, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो। और इसी सोच को इस गीत ने आवाज दी।

0: इन गीतों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दिनेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि शुभ सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: The tune of शुभ सुख चैन की

0: Jaya Jaya Jaya Jaya Ho. You see, the Jaya He becomes Jaya Ho. That's the nuance, that's the slight variation that was made in the Azad Hind score of the Hindustani version of our national anthem.
1: आकाशवाणी आर्काइव्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चेंबर ऑर्केस्ट्रा ने की थी और उसके बैंड लीडर थे एगिल क्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जनगण मन, टेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बीएल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
2: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक और सज्जन थे, हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के कॉनिसबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजुमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजुमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
1: बर्मा के घने जंगलों में इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो गुनगुना भी रहा था उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुनें आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: साम्राज्य की तोपें अब कब की खामोश हो चुकी हैं। कूच करते कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है, कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: फ्रेंड्स, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ अस हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कमिंग बैटल विल सर्वाइव टू सी इंडिया फ्री, बट वेदर वी सर्वाइव और नॉट, वेदर वी इंडिविजुअली लिव टू सी इंडिया फ्री और नॉट, we are confident that India shall be free.

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख बसुधा बैनर्जी, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जन गण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज INA के सभी गीत नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: संगीत सभा के आज के इस आयोजन में हम सुप्रसिद्ध गायक श्री सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2: नमस्कार। इन टुडेज एडिशन ऑफ अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा वी आर प्लीज टू प्रेजेंट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय द रेनाउंड वोकलिस्ट श्री सुधाकर देवले।
1: एक संगीतमय परिवार में जन्मे देवले जी ने अपनी गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती लता देवले जी से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने ग्वालियर घराने के श्री रघुनाथ वाघ जी से विशेष रूप से टप्पा गायन सीखा और पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से गुरु शिष्य परंपरा के तहत ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत और भजनों की गहन शिक्षा ग्रहण की।
2: Born into a musical family, Shri Devle received his initial training in vocal music from his mother, the late Srimati Lata Devle. Later, he specialized in tappa singing under the guidance of Shri Raghunath Vagh of the Gwalior Gharana. Furthermore, under the traditional Guru Shishya Parampara, he received intensive training in khayal, dhumri, natya sangeet and bhajans from the Padma Shri recipient Pandit Jitendra Abhisheki.
1: तानसेन, कालिदास, सवाई गंधर्व जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवले जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के ई ग्रेट कलाकार हैं। साथ ही आप संगीत शिरोमणि और विक्रमादित्य जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत है।
2: एन ए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन श्री देवले हैज डिलीवर्ड outstanding performances at prestigious national festivals such as the Tansen, Kalidas and Savai Gandharva festival as well as in the USA, UK and the Gulf countries. He has also been honored with several prestigious awards including the Sangeet Shiromani and Vikramaditya awards.
1: Sudhakar Devle ji apne karyakram ki shuruaat raag Puriya se kar rahe hain. Vilambit khayal ke bol hain pyare degar lagi जो एक ताल में निबद्ध है। द्रुत ख्याल के बोल हैं चलो हटो जी छेल काहे रोके गेल, जो त्रिताल में है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
2: श्री सुधाकर देवले इज कमेंसिंग हिज परफॉर्मेंस विद राग पुरिया। द कंपोजिशन इज सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स प्यारे देगर लागी। द कंपोजिशन इज सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स चलो हटो जी छैल काहे

0: रागपुरिया में अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन। देवले जी अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना के बोल हैं वर्णिन जाए सखी जो झपताल में निबद्ध है। द्रुत रचना के बोल हैं बेरी बसंत अब आयोरी जो त्रिताल में है।
1: दैट वॉज अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय श्री सुधाकर देवले इन रागपुरिया। श्री देवले विल नाउ प्रेजेंट राग बसंती केदार सेट टू झपताल विद द लिरिक्स बर्नीन जाय सकी, सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स बेरी बसंत अब आयोरी।

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस ध्वनि में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारी दानी दीम।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू द वोकल परफॉर्मेंस ऑफ श्री सुधाकर देवले जी इन राग बसंती केदार। श्री सुधाकर देवले इज कंक्लूडिंग हिज प्रोग्राम विद तराना इन राग हंस ध्वनि सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स दारा दिम तदारे दानी दिम।

0: में आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। Accompanying him were Pramod Borgaonkar on the harmonium and Ulhas Rajhans on the tabla. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's Akhil Bhartiya Ravivasariya Sangeet Sabha comes to an end.
2: Medium wave 438.6 meter arthat 684 kHz और FM 100.9 MHz पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजे है। अब सुनते हैं मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, पर मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तटों पर हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहने तथा जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है। इसलिए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वह 5 तारीख तक समुद्र में ना जाए। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इसके साथ ही हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त 2026। इस समय सवेरे के 5:29 हुए हैं। आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:32 हुए हैं। लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: किसी ने सच ही कहा है, मकान हो या इंसान, दोनों जब तक टूटते नहीं, पहले से अधिक अच्छे नहीं बन पाते। जब पुराना मकान टूटता है, तभी नया बनता है, पहले से अधिक बेहतर। इंसान भी जब परेशानी, धोखा, नाकामयाबी जैसे दर्द से गुजरता है, तभी समझ आती है, क्योंकि जीवन में किताबों से ज्यादा ज्ञान हालात सिखाते हैं। इसलिए अगर आज